बीआर इशारा ने कुछ ऐसी फिल्मों को चुना जिसमें टिपिकल प्रेम कहानी नहीं थी कि एक प्रेम कहानी में एक लड़का होता है, एक लड़की होती है और बड़ी हैप्पी एंडिंग होती है। इस तरह की कहानियों को उन्होंने नहीं चुना। मैंने शुरू में बताया कि किस तरह की कहानियां उन्होंने चुनी जिसमें संबंधों का उलझाव था और उसे किसी अंजाम तक पहुँचाना था, और हुआ उसका नतीजा ये कि बीआर इशारा को बी ग्रेड फिल्मों का डायरेक्टर कहा जाने लगा। लेकिन ये उनकी कहानियों की ताकत थी कि बी ग्रेड बताए जाने के बावजूद अपने दौर के तमाम बड़े सितारों के साथ उन्होंने काम किया, चाहे वो संजीव कुमार हो, राजेश खन्ना हो, राज बब्बर हो, राज किरण हो, जया बच्चन हो, अरुणा ईरानी हो, या पृथ्वीराज कपूर, या बहुत सारे और कलाकारों का, रीना रॉय की बात करें, ये तमाम कलाकार हैं जिन्होंने बीआर इशारा के साथ काम किया।

काशी दिलिक मीडियम वेव 197.2 मीटर अर्थात 1521 किलोहर्ट्ज़, साथ ही एफएम 104 मेगाहर्ट्ज़ पर आपकी सेवा में ये आकाशवाणी का तवांग केंद्र है।

आज सन 2026 जुलाई महीने की 25 तारीख व दिन है शनिवार। अब आरंभ होता है आज का प्रसारण। आज के इस प्रसारण को आप श्रोताओं तक पहुंचाने के लिए ड्यूटी रूम में उपस्थित रहेंगे प्रसारण सहायक श्री संगे बम्पा सिरथीपा, नियंत्रण कक्ष में उपस्थित रहेंगे अभियांत्रिकी सहायक श्री कामेयम्फो और सुश्री शिखा डेका, ट्रांसमीटर में उपस्थित रहेंगे अभियांत्रिकी सहायक श्री न्यूटन बोरा, श्री अच्युत बर्मन और श्री हिमांतो स्वर्गरी, मम्पा उद्घोषक श्री कुंचो संगे की तथा अन्य सहकर्मियों के साथ मैं आज की हिंदी उद्घोषिका गेंदन धामो। आकाशवाणी तवंग से कार्यक्रम सुन रहे आप सभी श्रोताओं का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन।

0: नगर, चिराईदेव और जोरहाट हैं। ताजा रिपोर्ट के अनुसार बाढ़ से संबंधित मामलों में 14 और लोगों की मौत हुई। इनमें चिराईदेव में 7, शिवसागर में 6 और जोरहाट में 1 व्यक्ति की मृत्यु हुई है। एक रिपोर्ट।
1: राज्य में बाढ़ से मरने वालों की कुल संख्या बढ़कर 61 हो गई है। प्रमुख नदियां दीखो, दिसंग और धनसरी खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। इससे ऊपरी असम में बाढ़ की स्थिति और भी गंभीर हो गई है। प्रभावित क्षेत्रों में राहत और बचाव अभियान जारी है। आपदा मोचन बल, जिला प्रशासन और अन्य एजेंसियां राहत सामग्री उपलब्ध कराने, फंसे हुए लोगों को निकालने और बाढ़ प्रभावित परिवारों को सहायता प्रदान करने में लगी हुई है। अधिकारी स्थिति पर कड़ी नजर रख रहे हैं और प्रभावित जिलों में राहत उपायों को तेज कर दिया गया है। गुवाहाटी से राकेश टोले की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से वैष्णवी।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्व शर्मा से टेलीफोन पर बातचीत कर बाढ़ की स्थिति की समीक्षा की। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री शर्मा ने बताया कि प्रधानमंत्री मोदी ने उन्हें राहत पुनर्वास और पुनर्निर्माण कार्यों में केंद्र सरकार की ओर से हर संभव सहायता का आश्वासन दिया। श्री शर्मा ने कहा कि असम के लोग इस कठिन समय में प्रधानमंत्री द्वारा दिए गए आश्वासन और अटूट समर्थन के लिए उनके प्रति अत्यंत आभारी हैं। इस बीच गुजरात में मॉनसून की स्थिति गंभीर बनी हुई है। राज्य के कई हिस्सों में तेज बारिश हो रही है। हमारी संवाददाता ने बताया है कि प्रभावित क्षेत्रों में राहत और बचाव अभियान युद्ध स्तर पर जारी है।
2: जर्फ की 32 प्लाटून और सेना की 6 टुकड़ियां भी विभिन्न जिलों में तैनात की गई है। लगातार हो रही बारिश से राज्य के जलाशयों में जल स्तर भी तेजी से बढ़ रहा है। सरदार सरोवर नर्मदा बांध में जल भंडारण क्षमता का लगभग 69% पानी भर चुका है, जबकि राज्य के 21 बांधों के लिए हाई अलर्ट जारी किया गया है। जल भराव के कारण यातायात और विद्युत सेवाएं भी प्रभावित हुई है। 34 स्टेट हाईवे समेत राज्य के 600 से अधिक सड़कें एहतियातन बंद कर दी गई है। वहीं मौसम विभाग ने राज्य के विभिन्न जिलों के लिए भारी से अति भारी बारिश की चेतावनी जारी करते हुए मछुआरों को समुद्र में न जाने की सलाह दी है। अपर्णा खुंट, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद।
0: भारतीय तटरक्षक बल ने 22 जुलाई की मध्यरात्रि से चलाए गए 11 बचाव अभियानों के माध्यम से दमन, दादरा और नगर हवेली तथा दक्षिण गुजरात के बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में फंसे 170 लोगों को बचाया है। वहीं सिक्किम के नामची जिले के फामतम गांव में आज भूस्खलन के कारण 2 लोगों के मारे जाने की आशंका है। नामची के SSP ने बताया कि बचाव अभियान चलाया जा रहा है। 2 घायलों को नामची जिला अस्पताल में भर्ती किया गया है। अधिक जानकारी की प्रतीक्षा है। जम्मू कश्मीर में खराब मौसम के कारण 6 दिनों तक स्थगित रहने के बाद वार्षिक श्री अमरनाथ यात्रा आज फिर से शुरू हो गई है। कश्मीर के संभागीय आयुक्त अंशुल गर्ग ने आकाशवाणी समाचार को बताया कि बालतल और पहलगाम दोनों मार्गों से यात्रा फिर से शुरू कर दी गई है। यात्रियों को सुरक्षित तीर्थ यात्रा के लिए प्रशासन द्वारा जारी निर्देशों का सख्ती से पालन करने की सलाह दी गई है। इस बीच 6,269 तीर्थयात्रियों का एक नया जत्था आज सुबह जम्मू के भगवती नगर यात्री निवास से रवाना हुआ। जम्मू कश्मीर में तेज बारिश के कारण लगातार 6 दिन तक निरस्त रही श्री माता वैष्णो देवी यात्रा आज फिर शुरू हुई। इस मार्ग पर लगातार बारिश, भूस्खलन और अचानक बाढ़ आने के जोखिम के कारण यात्रा को निरस्त कर दिया गया था। तीर्थयात्रियों को अपनी यात्रा के दौरान श्राइन बोर्ड और सुरक्षा एजेंसियों के निर्देशों तथा सुरक्षा परामर्श का पालन करने और मौसम संबंधी जानकारी से अवगत रहने की सलाह दी गई है। मौसम विभाग ने आज गुजरात में मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। वहीं कोंकण, गोवा, मध्य महाराष्ट्र, उड़ीसा और राजस्थान में भी इसी तरह की स्थिति रहने की संभावना है। अगले 2 से 3 दिन के दौरान हरियाणा, चंडीगढ़ और उत्तर प्रदेश में भी तेज बारिश हो सकती है। वहीं असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, तटीय कर्नाटक, पश्चिम बंगाल के गांगेय क्षेत्र, पंजाब, दक्षिण आंतरिक कर्नाटक और उत्तराखंड में भी कुछ स्थानों पर तेज बारिश की संभावना है। दिल्ली में भी आज तेज वर्षा हो सकती है। ये समाचार हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप और हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। सरकार आज दोपहर नई दिल्ली में कांग्रेस जनता पार्टी CJP के प्रतिनिधिमंडल के साथ तीसरे दौर की वार्ता करेगी। इस बैठक में परीक्षा प्रणाली में सुधार और प्रश्न पत्र लीक की घटनाओं को रोकने के उपायों पर प्रतिनिधिमंडल की मांगों पर चर्चा होगी। ये बैठक दोपहर 3:30 बजे कॉन्स्टिट्यूशनल क्लब में आयोजित होगी। इससे पहले केंद्रीय मंत्री JP नड्डा और डॉ जितेंद्र सिंह ने कल नई दिल्ली में CJP प्रतिनिधिमंडल से मुलाकात की थी। बैठक के बाद मीडिया से बातचीत में श्री नड्डा ने कहा कि सरकार ने परीक्षा प्रणाली में सुधार संबंधी CJP की मांगों को गंभीरता और धैर्यपूर्वक सुना है। मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय ने परीक्षा प्रश्न पत्र लीक और उससे जुड़े अनियमितताओं के मामलों की सुनवाई के लिए 4 विशेष फास्ट ट्रैक अदालतों को नामित किया है। न्यायालय ने निर्देश दिया है कि आरोप पत्र दाखिल होने

0: तीन महीने के भीतर इन मामलों का निपटारा किया जाए। उच्च न्यायालय ने कहा है कि ये अदालतें राज्य और केंद्रीय जांच एजेंसियों द्वारा भेजे गए संबंधित मामलों की भी सुनवाई करेगी। इनका अधिकार क्षेत्र आसपास के जिलों तक विस्तारित रहेगा। न्यायालय ने कहा कि इस पहल का उद्देश्य परीक्षा प्रणाली में निष्पक्षता, पारदर्शिता और विश्वसनीयता सुनिश्चित करना तथा ऐसे मामलों में त्वरित न्याय उपलब्ध कराना है। मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव ने कहा है कि राज्य सरकार अब इस घोषणा को अमल में लाते हुए चार प्रमुख शहरों में विशेष अदालतें स्थापित कर रही है। ये घोषणा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने युवाओं के हित में शिक्षा और रोजगार से जुड़े मामलों के शीघ्र निपटारे के लिए की थी। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने कल मध्य कोलकाता में कई वामपंथी संगठनों द्वारा नीट परीक्षा पेपर लीक के विरोध में आयोजित रैली के दौरान पत्रकारों पर हुए कथित हमले की कड़ी निंदा की है। उन्होंने कहा कि दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। मुख्यमंत्री ने आज विधानसभा में कहा कि इस घटना के संबंध में 7 मामले दर्ज किए जा चुके हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पेपर लीक मामले में सख्त कानून लाने को लेकर जारी किए गए अपने वीडियो संदेश पर मिली प्रतिक्रिया और सुझावों के लिए देश के युवाओं को धन्यवाद दिया है। श्री मोदी ने युवाओं के जबरदस्त समर्थन के लिए आभार व्यक्त किया।
1: थैंक यू फ्रेंड्स, मेरे जो वीडियो पोस्ट किया था उसको जिस प्रकार से आपने रिस्पॉन्ड किया, सकारात्मक सुझाव दिए, थैंक्स टू एवरीबॉडी। ये आपका प्यार बना रहेगा, हमारा नाता और अधिक सक्रियता से जुड़ता रहेगा।
0: वीडियो को अब तक 30 करोड़ 30 लाख से अधिक बार देखा जा चुका है। ये पहले 24 घंटों में सबसे अधिक देखा जाने वाला वीडियो है। प्रधानमंत्री ने कहा कि पेपर लीक जैसी घटनाओं पर रोक लगाने और दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई के लिए नया विधेयक संसद के मौजूदा सत्र में अगले सप्ताह पेश किया जाएगा। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने पेपर लीक और परीक्षा में गड़बड़ी के मामलों में फास्ट ट्रैक अदालत बनाने और कड़ी सजा के लिए एक मसौदा विधेयक को भी मंजूरी दे दी है। संसद भवन परिसर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल की बैठक में इसे मंजूरी दी गई। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि संसद के बाहर मीडिया को दिए गए बयान के साथ एआई का दुरुपयोग कर छेड़छाड़ की गई और एक डीप फेक वीडियो तैयार कर उसे गलत सूचना फैलाने के उद्देश्य से प्रसारित किया गया। सोशल मीडिया पर साझा किए गए पोस्ट में श्री गोयल ने बताया कि इस मामले में आज सुबह चाणक्यपुरी पुलिस थाने में एफआईआर दर्ज की गई है। उन्होंने कहा कि फर्जी वीडियो बनाने, प्रसारित करने या उसे बढ़ावा देने में शामिल सभी लोगों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। दिल्ली पुलिस ने कहा है कि नीट पेपर लीक मामले को लेकर चल रहे विरोध प्रदर्शनों के मद्देनजर वो सोशल मीडिया पर लगातार नजर रख रही है। आज नई दिल्ली में मीडिया को जानकारी देते हुए मध्य दिल्ली के पुलिस उपायुक्त रोहित राजवीर सिंह ने बताया कि फर्जी खबरें और एआई द्वारा निर्मित सामग्री फैलाने वाले 400 से अधिक सोशल मीडिया हैंडल की पहचान कर उन्हें ब्लॉक दिया गया है।
2: दिल्ली पुलिस ने लोगों से अपील की कि बिना पुष्टि वाले दावों पर बिल्कुल भी भरोसा ना करें। हमारी जांच में यह भी सामने आया कि पाकिस्तान से चलाए जा रहे कुछ सोशल मीडिया अकाउंट्स फेक कंटेंट फैला रहे हैं। दिल्ली पुलिस संबंधित एजेंसियों के एक साथ मिलकर ऐसे और अकाउंट्स की पहचान करने पर लगातार काम कर रही है। ऐसे 400 से अधिक हैंडल्स की अब तक पहचान कर ली गई है और उन्हें एआई जनरेटेड कंटेंट, डीपफेक वीडियो, एडिटेड तस्वीरें और प्रदर्शन से जुड़ी अन्य झूठी सामग्री फैलाने के कारण ब्लॉक किया गया है।
0: और अभी अभी समाचार मिला है कि नीट पेपर लीक मामले में शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने अपना इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपना इस्तीफा सौंपा। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने कहा है कि संसद में बिताया गया हर दिन, हर घंटा, हर मिनट और हर सेकंड लोकतंत्र को मजबूत बनाने के लिए समर्पित होना चाहिए। नई दिल्ली में आज राज्यसभा के नव निर्वाचित और मनोनीत सदस्यों के लिए आयोजित 2 दिवसीय ओरिएंटेशन और प्रशिक्षण कार्यक्रम के उद्घाटन समारोह को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि सदन में होने वाली बहस हमेशा किसी सार्थक निर्णय तक पहुंचनी चाहिए। सरकार ने सोशल मीडिया पर चल रहे उस वीडियो का खंडन किया है जिसमें दावा किया जा रहा है कि प्रमुख रक्षा अध्यक्ष जनरल एनएस राजा सुब्रमणि ने कहा है कि नई दिल्ली के जंतर मंतर पर हो रहे प्रदर्शनों के कारण 30,000 सेना के जवानों ने इस्तीफा दे दिया है। पत्र सूचना कार्यालय की तथ्य जांच इकाई ने स्पष्ट किया है कि यह वीडियो फर्जी और एआई से तैयार किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल शाम वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से विकसित वाइब्रेंट विलेज कार्यक्रम 2026 के प्रतिभागियों से बातचीत करेंगे। इस अवसर पर सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों का प्रतिनिधित्व करने वाले 400 से अधिक युवा प्रतिभागी प्रधानमंत्री से बातचीत करेंगे। पश्चिम बंगाल सरकार ने आज राज्य विधानसभा में नियंत्रक और महालेखा परीक्षक सीएजी की 28 लंबित रिपोर्टें पेश की हैं। इन लंबित रिपोर्ट को पेश करके पश्चिम बंगाल सरकार ने अपना किया गया वायदा पूरा किया। वित्त मंत्री

0: मंत्री स्वपन दासगुप्ता ने ये रिपोर्ट पेश की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने आज आषाढ़ी एकादशी के अवसर पर नागरिकों को शुभकामनाएं दी हैं। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप और सोशल मीडिया हैंडल @AIR न्यूज हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। भारत की स्क्वैश खिलाड़ी अनाहत सिंह ने इतिहास रचते हुए विश्व जूनियर स्क्वैश चैंपियनशिप के महिला सिंगल्स फाइनल में जगह बना ली है। उन्होंने आज कनाडा के ओंटारियो में खेले गए सेमीफाइनल में मिस्र की बार्ब सामेह को 3-1 से हराया। वहीं फाइनल में अनाहत का सामना आज मिस्र की रुकैया सलीम से होगा। ये मैच भारतीय समयानुसार रात करीब 10:30 बजे शुरू होने की उम्मीद है। अनाहत सिंह जोशना चिनप्पा के बाद विश्व जूनियर स्क्वैश चैंपियनशिप के फाइनल में पहुंचने वाली दूसरी भारतीय खिलाड़ी बन गई हैं। ग्लासगो में राष्ट्रमंडल खेलों में भारत ने अपना पहला पदक जीत लिया है। झंडू कुमार ने पैरा भारोत्तोलन की पुरुष हैवीवेट स्पर्धा में कांस्य पदक जीता। उन्होंने 190 किलोग्राम भार उठाकर तीसरा स्थान हासिल किया। इस उपलब्धि के बाद उन्होंने खुशी व्यक्त करते हुए अपने कोच और प्रशिक्षकों का आभार व्यक्त किया।
1: बहुत अच्छा लग रहा है, पहला मेडल है हमारा। हमारे पीछे कोच हैं राजेंद्र सिंह और हमारा JP सर हैं, वो भी बहुत सहयोग किए हैं। आज उन्हीं सब बदौलत हमें आज मेडल प्राप्त हुआ है। बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं कि हम पे आज इतना प्रैक्टिस करवाए, प्यार दिए और भी आगे हम अच्छा करने की कोशिश करेंगे।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एथलीट झंडू कुमार को बधाई दी है। सोशल मीडिया पोस्ट में प्रधानमंत्री ने कुमार के प्रदर्शन को शानदार बताते हुए कहा है कि ये उपलब्धि उनकी अदम्य शक्ति, अटूट दृढ़ संकल्प और वर्षों के अनुशासित प्रयासों का सशक्त उदाहरण है। क्रिकेट में भारत और जिम्बाब्वे के बीच 3 मैचों की T20 अंतर्राष्ट्रीय श्रृंखला का दूसरा मुकाबला आज हरारे में खेला जाएगा। ये मैच भारतीय समय अनुसार 4:30 बजे शुरू होगा। आकाशवाणी कार्यक्रम पर्सन बिहाइंड द स्टोरी श्रृंखला के अंतर्गत हम करगिल युद्ध के जाबाज योद्धा और भारत के पहले ब्लेड रनर सेवानिवृत्त मेजर DP सिंह से बातचीत करेंगे। इस बातचीत को आज शाम 5:10 से 100.1 आकाशवाणी गोल्ड पर सुना जा सकता है। श्रोता कार्यक्रम को न्यूज ऑन AIR ऐप और न्यूज ऑन AIR के आधिकारिक YouTube चैनल पर भी सुन सकते हैं। कार्यक्रम का पुनः प्रसारण कल दोपहर 12:30 से किया जाएगा। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने अपने पद से इस्तीफा दिया। सरकार और CGP के बीच परीक्षा प्रणाली में सुधार और पेपर लीक रोकने के उपायों पर आज तीसरे दौर की बातचीत। मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय ने पेपर लीक और उससे जुड़ी अनियमितताओं के मामलों की सुनवाई के लिए 4 विशेष फास्ट ट्रैक अदालत गठित की। असम में बाढ़ की स्थिति गंभीर, मरने वालों की संख्या 61 हुई। 1 लाख से अधिक लोगों ने राहत शिविरों में शरण ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का हर संभव सहायता का आश्वासन। वर्षा प्रभावित गुजरात में बचाव और राहत कार्य जोरों पर, 40,000 से अधिक लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया। जम्मू कश्मीर में खराब मौसम के कारण 6 दिन तक स्थगित रहने के बाद श्री अमरनाथ यात्रा और श्री माता वैष्णो देवी यात्रा फिर से शुरू। और खेलों में स्क्वैश में भारत के अनाहत सिंह विश्व जूनियर चैंपियनशिप के महिला सिंगल्स के फाइनल में पहुंचे। वहीं क्रिकेट में भारत और जिम्बाब्वे के बीच दूसरा मुकाबला आज हरारे में खेला जाएगा। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: आकाशवाणी दिल्ली से अनुप्रसारित अभी आप सुन रहे थे दोपहर समाचार। आपकी सेवा में ये आकाशवाणी का तवांग केंद्र है। समय दोपहर के 2:30 हुए हैं। लीजिए श्रोताओं, प्रस्तुत है भक्ति गीतों का दैनिक कार्यक्रम वंदना। इस कार्यक्रम के तहत आज सुनिए सुरेश वाटकर के आवाज में चंद राधा कृष्ण भक्ति गीत।

श्रोताओं, इस वक्त आप सुन रहे हैं भक्ति गीतों के दैनिक कार्यक्रम वंदना के तहत सुरेश वाडकर के आवाज में चंद हिंदी भक्ति गीत, जिसका प्रसारण किया जा रहा है आकाशवाणी के तवांग केंद्र से। लीजिए कार्यक्रम वंदना जारी है इन्हीं कलाकार के आवाज में।

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे सुरेश वाडकर की आवाज में चंद कृष्ण भक्ति गीत। इसी के साथ भक्ति गीतों का दैनिक कार्यक्रम वंदना समाप्त हुआ। आपकी सेवा में ये आकाशवाणी का तवांग केंद्र है। समय दोपहर के 3 बजे है। लीजिए श्रोताओं, अब पेश है विभिन्न प्रांतों के गीतों पर आधारित कार्यक्रम प्रादेशिक संगीत। इस कार्यक्रम के तहत आज आनंद लीजिए जिग्मी दोर्जी और साथियों से चंद लदा की लोक गीतों का।

श्रोताओं अभी आप आनंद ले रहे हैं चंद लद्दाखी लोक गीतों का, जिग्मी दर्जी और साथियों के आवाजों में विभिन्न प्रांतों के गीतों पर आधारित कार्यक्रम प्रादेशिक संगीत के तहत, जिसका प्रसारण किया जा रहा है आकाशवाणी के तवांग केंद्र से। लीजिए कार्यक्रम प्रादेशिक संगीत जारी है इन्हीं कलाकार के आवाज में।

0: श्रोताओं, अभी आपने आनंद लिया जिग्नी दोरजी और साथियों के आवाजों में चंद लद्दाखी लोकगीतों का। इसी के साथ ही विभिन्न प्रांतों के गीतों पर आधारित कार्यक्रम प्रादेशिक संगीत समाप्त हुआ। आपकी सेवा में ये आकाशवाणी का तवांग केंद्र है। समय दोपहर के 3:30 हुए हैं। लीजिए श्रोताओं, प्रस्तुत है कार्यक्रम मेरी बात। इस कार्यक्रम के आज के अंक में सुनिए कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय कांगतेंग से 10वीं कक्षा की छात्रा छोयनक जामो से बदलते समय में जागरूकता का महत्व विषय पर उनके विचार।
1: तहसी दिलेक आकाशवाणी तावंग के सभी श्रोताओं को मेरा सादर नमस्कार। कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय कांगतेंग से 10वीं कक्षा की छात्र मैं छोयनक जामो। आज मैं कार्यक्रम मेरी बात के माध्यम से बदलते समय में जागरूकता का महत्व विषय पर कुछ बातें साझा करने जा रही हूँ। आज दुनिया बहुत तेजी से बदल रही है। हर दिन नई नई जानकारियाँ और नई तकनीक हमारे जीवन का हिस्सा बन रही है। ऐसे समय में जागरूक रहना बहुत जरूरी है। जागरूक होने का मतलब केवल समाचार देखना नहीं है, इसका अर्थ है सही जानकारी रखना, सही निर्णय लेना और अपनी तथा दूसरों की सुरक्षा का ध्यान रखना। एक जागरूक विद्यार्थी समय पर पढ़ाई करता है, अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखता है और अपने आसपास के वातावरण को साफ रखने में भी योगदान देता है। वह पानी और बिजली की बचत करता है, पेड़ पौधों की रक्षा करता है और प्लास्टिक का कम से कम उपयोग करता है। आज मोबाइल और इंटरनेट से हमें बहुत सी जानकारी मिलती है, लेकिन हर बात पर तुरंत विश्वास करना ठीक नहीं है। किसी भी जानकारी को सच मानने से पहले उसकी जांच करना भी जागरूकता का ही हिस्सा है। जागरूकता हमें छोटी छोटी बातों में भी दिखाई देती है, जैसे सड़क पर चलते समय यातायात

0: के नियमों का पालन करना, बारिश के मौसम में सावधानी बरतना, विद्यालय के नियमों का सम्मान करना और जरूरत पड़ने पर दूसरों की मदद करना। यदि हर विद्यार्थी जागरूक और जिम्मेदार बने तो हमारा परिवार, हमारा विद्यालय और हमारा तवांग भी बेहतर बन सकता है। तो चलिए हम सभी यह संकल्प ले कि हम हमेशा सही जानकारी अपनाएंगे, अच्छे कार्य करेंगे और एक जागरूक तथा जिम्मेदार नागरिक बनेंगे। धन्यवाद।
1: श्रोताओं, अभी आपने सुना कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय कांतिन से दसवीं कक्षा के छात्रा चयन एग्जामों से बदलते समय में जागरूकता का महत्व विषय पर उनके विचार। इसी के साथ ही कार्यक्रम मेरी बात का यह अंक समाप्त हुआ। आपकी सेवा में ये आकाशवाणी का तवांग केंद्र है। समय दोपहर के 3:33 हुए हैं। श्रोताओं, हमारे अगले कार्यक्रम की ओर बढ़ने से पहले आइए सुनते हैं आरबीआई द्वारा जारी एक जरूरी संदेश।
2: बदलो बदलो आदत बदलो।
3: मशीन में कपड़े डालने से पहले चेक नहीं किया था क्या?
2: बदलो बदलो आदत बदलो। अब नजदीकी बैंक जाकर फटे पुराने नोट्स बदलिए। अगर बैंक मना करे तो आरबीआई के ओम्बुड्समैन से शिकायत करें। आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
1: तो चलिए साथियों, अब आरंभ करते हैं महिलाओं पर केंद्रित नगमों के कार्यक्रम नारी संगीत को। लीजिए नारी संगीत कार्यक्रम का पहला नगमा पेश है स्टूडेंट ऑफ द ईयर फिल्म से श्रेया घोषाल, उदित नारायण और विशाल शेखर के आवाजों में। गीत के बोल है अन्विता दत्त के और संगीत विशाल शेखर का।

कार्यक्रम नारी संगीत का दूसरा नगमा प्रस्तुत है आई हेट लव स्टोरीज फिल्म से श्रेया घोषाल और सोना मोहापात्रा के आवाजों में। गीत को शब्दों में पिरोया है कुमार ने और संगीत से सवारा है विशाल शेखर ने।

श्रोताओं, कार्यक्रम नारी संगीत का अंतिम नगमा सुनिए। हैप्पी न्यू ईयर फिल्म से श्रेया घोषाल और अरिजीत सिंह के आवाजों में। गीतकार है इरशाद कामिल और संगीतकार है विशाल शेखर।

श्रोताओं, हैप्पी न्यू ईयर फिल्म के इस नगमे के साथ ही महिलाओं पर केंद्रित नगमों का कार्यक्रम नारी संगीत यहीं समाप्त हुआ। आपकी सेवा में ये आकाशवाणी का तवांग केंद्र है। समय दोपहर के 3:50 हुए हैं। आइए हमारे अगले कार्यक्रम की ओर बढ़ने से पहले सुनते हैं स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जारी एक जरूरी संदेश।

0: भारत अभियान।
1: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते, टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जी और टीबी की हार।
2: निक्षय मित्र, इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
0: जन-जन का रखे ध्यान, टीबी मुक्त भारत अभियान।
1: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
3: तो चलिए श्रोताओं, अब आनंद लेते हैं चंद आधुनिक हिंदी फिल्मी नगमों का कार्यक्रम गीत मंजरी के तहत। तो लीजिए पहला नगमा इस कार्यक्रम का, यानी गीत मंजरी कार्यक्रम का, प्रस्तुत है थ्री इडियट्स फिल्म से सोनू निगम और श्रेया घोषाल के आवाजों में। गीत के बोल है स्वानंद किरकिरे के और संगीत शांतनु मोइत्रा का।

श्रोताओं शाम और सुल्तान खान की आवाजों में सुनिए कार्यक्रम गीत मंजरी का दूसरा नगमा, जिसे शब्दों में पिरोया है इरशाद कामिल ने और संगीत से सवारा है प्रीतम ने, और इस गीत को हमने चुना है जब वी मेट फिल्म से।

श्रोताओं, अभी आपने आनंद लिया किस्मत कनेक्शन फिल्म से आतिफ असलम और अलका याग्निक के आवाजों में एक गीत का, जिसे शब्दों में पिरोया है सईद कादरी ने और संगीत से सवारा है प्रीतम ने। आइए अगला नगमा सुनते हैं मुन्ना माइकल फिल्म से विशाल मिश्रा और सुनिधि चौहान के आवाजों में। इस गीत के बोल है कुमार के और संगीत विशाल शेखर का।

श्रोताओं, कार्यक्रम गीत मंजरी के तहत इस वक्त आप आनंद ले रहे हैं चंद आधुनिक हिंदी फिल्मी नगमों का, जिसका प्रसारण किया जा रहा है आकाशवाणी के तवांग केंद्र से। तो आइए इस गीत के सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए आप सुनते हैं बागी फिल्म से मीत ब्रदर्स और मोनाली ठाकुर की आवाज में एक गीत, जिसे शब्दों में पिरोया है कुमार ने और संगीत से संवारा है मीत ब्रदर्स ने।

श्रोताओं अभी आपने आनंद लिया अंकित कुमार की आवाज में एक गीत का जो हमने चुना था एक विलेन फिल्म से। इस गीत के बोल हैं मनोज मुंतशिर के और संगीत स्वयं गायक अंकित तिवारी का। लीजिए कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए प्रस्तुत है गुमराह फिल्म से सहरन खान अरमान मलिक और सलमा आगा के आवाजों में एक गीत जिसे शब्दों में पिरोया है रश्मि विराग ने और संगीत से सवारा है तनिष्क बागची ने।

श्रोताओं, कार्यक्रम गीत मंजरी का अंतिम नगमा प्रस्तुत है अनजाने अनजाने फिल्म से शेखर रवजानी और कारालीसा मुंटेरो के आवाजों में। गीत को शब्दबद्ध किया है अमित भट्टाचार्य, अंगिता दत्त गुप्तन और कारालीसा मुंटेरो ने और संगीतबद्ध विशाल शेखर ने।

श्रोताओं, इन्हीं आधुनिक हिंदी फिल्मी नगमों के साथ ही कार्यक्रम गीत मंजरी अब समाप्त हुआ। आपकी सेवा में ये आकाशवाणी का तवांग केंद्र है। समय संध्या के 4:30 हुए हैं। लीजिए अब पेश है शास्त्रीय रागों पर आधारित कार्यक्रम राग रंग। इस कार्यक्रम के तहत आज आनंद लीजिए आर के सूर्य नारायण से वीणा वादन का। राग है हंस नोदा।

की सूर्य नारायण से वीणा वादन का। इसी के साथ शास्त्रीय रागों पर आधारित कार्यक्रम राग रंग अब समाप्त होने को है। आपकी सेवा में ये आकाशवाणी का तवांग केंद्र है। समय संध्या के 4:45 होने वाले हैं। श्रोताओं, अब से चंद ही पलों में सुनिए आकाशवाणी ईटानगर से अनुप्रसारित हिंदी में समाचार, तत्पश्चात अंग्रेजी में समाचार 4:55 पर। कृपया थोड़ी प्रतीक्षा करें।

नमस्कार, ये आकाशवाणी है। अभी आप मीनाक्षी मजुमदार से समाचार सुनेंगे। पहले पहले मुख्य समाचार। नीट पेपर लीक मामले में शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने दिया इस्तीफा। केंद्रीय कैबिनेट ने पेपर लीक और परीक्षा में गड़बड़ी के मामलों के लिए फास्ट ट्रैक कोड बनाने और कड़ी सजा सुनिश्चित करने वाले एक ड्राफ्ट बिल को मंजूरी दे दी है। परीक्षा व्यवस्था में बड़े सुधार लाने की दिशा में एक अहम कदम उठाते हुए नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने 47 अधिकारियों को नौकरी से हटा दिया है। इस प्रस्तावित बिल में पेपर लीक करने पर 10 साल की जेल और 10 करोड़ रुपए तक के जुर्माने का प्रस्ताव है। मुख्यमंत्री हेमंत विश्व शर्मा ने शनिवार को बताया कि असम में जारी बाढ़ से मरने वाले की संख्या बढ़कर 62 हो गई है। सड़कों के खराब होने की वजह से बचाव दल अभी भी नजीरा के लगभग 30% और शिवसागर के 20% प्रभावित इलाकों तक नहीं पहुँच पा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उस वीडियो पर मिली प्रतिक्रियाओं और सकारात्मक सुझावों के लिए सभी को धन्यवाद किया। अरुणाचल प्रदेश मिनरल डेवलपमेंट एंड ट्रेडिंग कॉरपोरेशन लिमिटेड के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड अरुणाचल प्रदेश में चुनिंदा जगहों पर HPCL रिटेल आउटलेट खोलेगी। अब समाचार विस्तार से। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने आज अपनी पद से इस्तीफा दे दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भेजे अपने त्याग पत्र में श्री प्रधान ने कहा कि पिछले 10 दिन की घटनाओं से उनका मन व्यथित था और ये उनके लिए व्यक्तिगत प्रतिष्ठा का विषय नहीं है। उन्होंने कहा कि भारत की युवा शक्ति देश की सबसे बड़ी ताकत है और युवाओं को भ्रम के कुचक्र में नहीं फंसने देंगे। श्री प्रधान ने कहा कि उन्होंने त्यागपत्र इसलिए दिया ताकि जंतर मंतर और देश में जो वर्तमान स्थिति बनी है उसका राष्ट्र विरोधी ताकतें लाभ ना उठा सके। त्यागपत्र में श्री प्रधान ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन, विश्वास और सहयोग के लिए आभार व्यक्त किया। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने पेपर लीक और परीक्षा में गड़बड़ी के मामलों में फास्ट ट्रैक अदालत बनाने और कड़ी सजा के लिए एक मसौदा विधेयक को मंजूरी दे दी है। संसद भवन परिसर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में

मंत्रिमंडल की बैठक में इसे मंजूरी दी गई। इस विधेयक को अगले सप्ताह संसद में पेश किए जाने की संभावना है। श्री मोदी ने बृहस्पतिवार को एक वीडियो कॉन्फ्रेंस संदेश में पेपर लीक के खिलाफ कड़ी कार्रवाई के प्रावधानों वाला विधेयक संसद में पेश करने की घोषणा की थी। नेशनल परीक्षा एजेंसी के 47 अधिकारियों को बर्खास्त कर दिया है। सूत्रों के मुताबिक इनमें से कुछ अधिकारियों के खिलाफ कानूनी और आपराधिक कार्रवाई भी की जाएगी। ये परीक्षा व्यवस्था में बड़े सुधार लाने की दिशा में एक अहम कदम है। साथ ही पेपर लीक के मामलों को लेकर विवादों में रही एजेंसी में किए जा रहे व्यापक बदलावों का हिस्सा भी है। असम में बाढ़ की स्थिति गंभीर बनी हुई है। 1,00,000 से अधिक लोग राहत शिविरों में शरण लिए हुए हैं। सबसे ज्यादा प्रभावित जिले शिवसागर, चरोईदेव और जोरहाट है। ताजा रिपोर्ट के अनुसार बाढ़ से संबंधित मामलों में 14 और लोगों की मौत हुई। इनमें चरोईदेव के साथ शिवसागर में 6 और जोरहाट में 1 व्यक्ति की मृत्यु हुई। इनके साथ राज्य में बाढ़ से मरने वालों की कुल संख्या बढ़कर 61 हो गई है। प्रमुख नदियां देखो, दिसंग और धनसिरी खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। इससे ऊपरी असम में बाढ़ की स्थिति और भी गंभीर हो गई है। प्रभावित क्षेत्रों में राहत और बचाव अभियान जारी है। आपदा मोचन बल, जिला प्रशासन और अन्य एजेंसियां राहत सामग्री उपलब्ध कराने, फंसे हुए लोगों को निकालने और बाढ़ प्रभावित परिवारों को सहायता प्रदान करने में लगी हुई है। अधिकारियों स्थिति पर कड़ी नजर रख रहे हैं और प्रभावित जिलों में राहत उपायों को तेज कर दिया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज असम के मुख्यमंत्री हेमंत विश्व शर्मा से टेलीफोन में बातचीत कर बाढ़ की स्थिति का समीक्षा की। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री शर्मा ने बताया कि प्रधानमंत्री ने राहत कार्य की प्रगति और जमीनी स्तर पर सामने आ रही चुनौतियों के बारे में जानकारी मांगी। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उन्हें राहत, पुनर्वास और पुनर्निर्माण कार्य में केंद्र सरकार की ओर से हर संभव सहायता का आश्वासन दिया। श्री शर्मा ने कहा कि असम के लोग इस कठिन समय में प्रधानमंत्री द्वारा दिए गए आश्वासन और अटूट समर्थन के लिए उनके प्रति अत्यंत आभारी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पेपर लीक मामले में सख्त कानून लाने को लेकर जारी किए गए अपने वीडियो संदेश पर मिले लोगों के सुझाव और प्रतिक्रियाओं के लिए आभार व्यक्त किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि पेपर लीक जैसी घटनाओं पर रोक लगाने और दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई के लिए नया विधेयक संसद के मौजूदा सत्र में अगले सप्ताह पेश किया जाएगा। इस विधेयक के मसौदे को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने मंजूरी दे दी है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि जनता के साथ उनका रिश्ता विश्वास और सहयोग पर आधारित है और यह जुड़ाव आगे भी लगातार मजबूत होता रहेगा। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इंस्टाग्राम वीडियो ने नया रिकॉर्ड बनाया है। इस वीडियो में 24 घंटे में 30,30,00,000 से अधिक बार देखा गया है। इसके साथ ही ये दुनिया में सबसे अधिक देखा जाने वाला वीडियो बन गया है। इससे पहले ये रिकॉर्ड 30 करोड़ व्यूज का था। आज अरुणाचल प्रदेश सरकार के उपक्रम अरुणाचल प्रदेश मिनरल डेवलपमेंट एंड ट्रेडिंग कॉरपोरेशन लिमिटेड APMDTCL ने राज्य भर में चुनिंदा जगहों पर HPCL रिटेल आउटलेट खोलने के लिए हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। इस MOU का मकसद APMDTCL द्वारा मैनेज की जाने वाली सही जगहों पर फ्यूल रिटेल आउटलेट बनाना है, जिससे फ्यूल की उपलब्धता बेहतर हो, रोजगार के मौके पैदा हो और इनके लिए लगातार आय हो सके। इस एमओयू पर APMDTCL के मैनेजिंग डायरेक्टर श्री विवेक और की ओर से डिब्रूगढ़ रिटेल रीजनल ऑफिस के चीफ रीजनल मैनेजर श्री मृणमय कमन ने हस्ताक्षर किए। इस मौके पर बोलते हुए दोनों संगठनों ने भरोसा जताया कि यह साझेदारी अरुणाचल प्रदेश में फ्यूल

0: स्ट्रक्चर को मजबूत करेगी, अच्छी क्वालिटी के पेट्रोलियम प्रोडक्ट तक लोगों की पहुंच बेहतर बनाएगी और लंबे समय के सहयोग से राज्य में सामाजिक आर्थिक विकास में योगदान देगी। एक सफल ऑपरेशन में कैपिटल पुलिस ने सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया की गंगा ब्रांच में पूर्व ब्रांच मैनेजर विवोटोबी झीमो को दिमापुर से गिरफ्तार किया। उन पर सरकारी सब्सिडी और लोन स्कीम के नाम पर कई लोगों के साथ धोखाधड़ी करने का आरोप है। पुलिस के मुताबिक विवोटोबी झीमो 8 करोड़ रुपए से ज्यादा की गंभीर वित्तीय धोखाधड़ी में शामिल थे। जम्मू कश्मीर में खराब मौसम की वजह से 6 दिनों तक रुकी रही सलाना श्री अमरनाथ यात्रा और श्री माता वैष्णो देवी यात्रा आज फिर से शुरू हो गई है। आकाशवाणी न्यूज से बात करते हुए कश्मीर के डिविजनल कमिश्नर अंशुल गर्ग ने बताया कि अमरनाथ यात्रा वालटल और पहलगाम दोनों रास्तों से फिर से शुरू कर दी गई है। आज सुबह 6,200 से ज्यादा तीर्थयात्रियों का एक नया जज्बा जम्मू के भगवती नगर यात्री निवास के से रवाना हुआ। तीर्थयात्रियों को सलाह दी गई है कि वे सुरक्षित यात्रा के लिए प्रशासन की ओर से जारी दिशा निर्देशों का सख्ती से पालन करें। पुरुष क्रिकेट में आज हरारे में 3 मैचों की सीरीज के दूसरे T20 इंटरनेशनल मैच में भारत का मुकाबला मेजबान जिम्बाब्वे से होगा। यह मैच आज दोपहर 4:30 बजे भारतीय मानक के अनुसार शुरू होगा। गुरुवार को खेले गए पहले मैच में शानदार 7 विकेट से जीत हासिल करने के बाद भारतीय टीम ने सीरीज में 1-0 की बढ़त बना ली है। दोबारा फिर मुख्य समाचार। नीट पेपर लीक मामले में शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने दिया इस्तीफा। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: दिस इज आकाशवाणी द न्यूज रेड बाय प्रेम शर्मा। यूनियन एजुकेशन मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान हैज रिजाइंड एंड टेंडर हिज रेजिग्नेशन टू प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी टुडे। In a social media post, Mr. Pradhan said he was pained by the prevailing situation following the students' protest over the past 10 days, adding that it was not a matter of prestige for him. He said that considering the situation at Jantar Mantar in New Delhi and across the country, and with the aim of preventing anti-national forces from exploiting it, as well as ensuring that not a single student's future gets entangled in legal complexities, he decided to tender his resignation to the Prime Minister. The Prime Minister Narendra Modi has accepted his resignation. The flood situation in Assam remains critical, with over 1,15,000 people taking shelter in relief camps. Sipsagar, Charaidio and Jorhat are the worst affected districts. 14 more flood-related deaths have been reported, taking the state's flood death toll to 62. The Dikho, Disang and Dhansiri rivers continue to flow above the danger mark, worsening the situation. Relief and rescue operations are underway, with disaster response teams and district head authorities providing assistance and closely monitoring the affected areas. Prime Minister Narendra Modi today held a telephonic conversation with Assam Chief Minister Hemanta Biswa Sarma and reviewed the flood situation in the state. The Prime Minister assured him of every possible assistance from the central government to support the ongoing relief, rehabilitation and reconstruction efforts. In Jammu and Kashmir, the annual Sri Amarnath Yatra and Sri Mata Vaishno Devi Yatra resumed today after remaining suspended for 6 days due to inclement weather conditions. Talking to Akashwani News, Divisional Commissioner Kashmir Anshul Garg said, Amarnath Yatra has been resumed from both Baltal and Pahalgam routes. A fresh batch of over 6,200 pilgrims left the Bhagwati Nagar Yatri Nivas in Jammu this morning. The pilgrims have been advised to strictly adhere to the advisories issued by the administrations of safe pilgrimage. The government will hold third round of discussions with the CJP delegation in New Delhi this afternoon.

Do you

आकाशवाणी दिल्ली के रिलिया सनमेतोई बुर लेरिम स्वस्थ चर्चा तेष्णुप छुसे निसिकनिंग कर्म चीचे सनमेतोई बुर तेष्णुप छुसे निसिकनिंग कर्म खली चिंगने चे लेरिम साज और आवाज छुसे निसिकनिंग कर्म खेने लेंगे चे हिंदी का सिंगर छुसे निसिकनिंग कर्म खेने चीचे इंजी का सिंगर आकाशवाणी ईटानगर के रिलिया सनमेतोई बुर तेष्णुप छुसे गेचे लेरिम पुराने हिंदी फिल्मी गीत कलंगे एतंग वासी व्हाट्सएप क्यू

मीडियम वेव 197.92 अर्थात 1521 किलोहर्ट्ज़, साथ ही एफएम 104 मेगाहर्ट्ज़ पर आपकी सेवा में ये आकाशवाणी का तवांग केंद्र है। समय संध्या के 6:10 हुए हैं। लीजिए प्रस्तुत है कार्यक्रम जरोखा। श्रोताओं, कार्यक्रम जरोखा के तहत चलिए हम आपको अवगत करवाते हैं हमारे केंद्र से प्रसारित होने वाले आज के शेष कार्यक्रम तथा कल प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों से। पहले जानिए आज के शेष कार्यक्रमों के बारे में। अब से थोड़ी देर यानी संध्या के 6:20 पर शेदुन लेरिम के तहत सुनिए नेताजी सुभाष चंद्र बोस आवासीय विद्यालय शारो के छात्रा तंजिन यांगसुम और साथियों से कैप्ट्रो ग्यूनचक सुम्बा गंगलोमा डोलमा यावई जप्तिन तंजिक मुनलम और ंगोवा मुनलम। आकाशवाणी दिल्ली से अनुप्रसारित हिंदी में समाचार आज शाम 7:00, तत्पश्चात अंग्रेजी में समाचार 7:05 पर। आज शाम 7:10 पर स्वास्थ्य से संबंधित साप्ताहिक कार्यक्रम स्वास्थ्य चर्चा के अंतर्गत सुनिए खंडरो ड्रोवा जंगमो जिला अस्पताल तावंग के एनसीडी सेल के साइकोलॉजिस्ट लुपसंग यूटन से धूम्रपान सेवन के दुष्प्रभाव विषय पर हुए एक साक्षात्कार। सुर और धुनों के साप्ताहिक कार्यक्रम साज और आवाज के तहत सुनिए तुमसे अच्छा कौन है फिल्म से एक गीत के साज। दोबारा सुनिए एक गीत का साज और आवाज आज शाम 7:32 पर। आज शाम 7:45 पर आकाशवाणी ईटानगर से अनुप्रसारित प्रादेशिक समाचार, तत्पश्चात रीजनल न्यूज 7:50 पर। 7:55 पर कार्यक्रम कौमे तराने, जिसके तहत आप आनंद ले सकेंगे 10 फिल्म से शंकर महादेवन, उदित नारायण, महालक्ष्मी अय्यर और डोमिनिक के आवाजों में एक देशभक्ति गीत का। आपकी वजह फरमाइशों पर आधारित सदाबहार नगमों का कार्यक्रम पुराने हिंदी फिल्मी गीत आज रात्रि 8:00, जिसमें शामिल है राजा जानी, शोर और बाबी फिल्मों से 3 नगमे। आज रात्रि 8:15 पर आकाशवाणी ईटानगर से अनुप्रसारित अरुणाचल न्यूज रील, आकाशवाणी दिल्ली से अनुप्रसारित स्पोर्ट्स स्कैन आज रात्रि 8:30 पर, तत्पश्चात समाचार संध्या 8:45 पर तथा रात्रि 9:00 न्यूज एट 9। आज रात्रि 9:15 पर हमारे केंद्र से कल प्रसारित होने वाले चंद कार्यक्रमों के संक्षिप्त विवरण के साथ रात्रि 9:16 पर आज के तमाम कार्यक्रम समाप्त होंगे। श्रोताओं, ये तो रहे हमारे केंद्र से आज शाम प्रसारित होने वाले शेष कार्यक्रमों की जानकारियां। चलिए अब हम आपको अवगत करवाते हैं हमारे केंद्र से कल यानी 26 जुलाई 2026 के दिन प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों से। श्रोताओं, कल सुबह 10:37 पर शुरू होगा विशेष प्रातः प्रसारण, जिसके तहत सुबह 10:45 पर आप सुन पाएंगे कार्यक्रम वंदना के अंतर्गत अनूप जलोटा के आवास में चंद हिंदी भजन। कल सुबह 11:00 आप सुन पाएंगे भारत के माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा देशवासियों को संबोधन।

मासिक रेडियो कार्यक्रम मन की बात के 136वें संस्करण में, तत्पश्चात इसी कार्यक्रम का मनपा संस्करण जिसे प्रस्तुत करेंगे श्री थुप्तन ताशी। श्रोताओं, रोजाने की तरह हमारा कल का दोपहर प्रसारण शुरू होगा 2 बजे आकाशवाणी दिल्ली से अनुप्रसारित मिडडे न्यूज के साथ, जिसके पश्चात आप सुन पाएंगे दोपहर समाचार 2:15 पर। कल दोपहर 2:30 पर भक्ति गीतों के दैनिक कार्यक्रम वंदना के तहत सुनिए लामा थुतन जम्बा और साथियों से बौद्ध भक्ति गीत। विभिन्न प्रांतों के गीतों का कार्यक्रम प्रादेशिक संगीत कल दोपहर 3 बजे, जिसके अंतर्गत आप आनंद ले पाएंगे वंकफ वंशु के आवास में चंद आधुनिक वांगचो गीतों का। कल दोपहर तीन बजकर तीस मिनट पर कार्यक्रम मेरी बात के तहत सुनिए कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय कंगतिंग के 8वीं कक्षा के छात्रा तेंजिन डोलमा से हमारी मनपा संस्कृति विषय पर उनके विचार। महिलाओं पर केंद्रित नगमों के कार्यक्रम नारी संगीत कल दोपहर 3:33 पर, जिसके तहत आप आनंद ले सकेंगे सिंगम फिल्म से श्रेया घोषाल, राबता फिल्म से आतिफ असलम, गुडबाय फिल्म से अमित त्रिवेदी, रॉय फिल्म से मीट ब्रदर्स अनजान और कनिका कपूर, ओम शांति ओम फिल्म से के तथा आरक्षण फिल्म से मोहित चौहान और श्रेया घोषाल के आवाजों में चंद महिलाओं पर केंद्रित नगमों का। कल शाम 4 बजे सदाबहार नगमों के मासिक कार्यक्रम प्रतिध्वनि के तहत आनंद लीजिए बरसात की एक रात फिल्म से लता और किशोर कुमार, रजिया सुल्तान फिल्म से लता मंगेशकर, कोयल फिल्म से कुमार सानू और कविता कृष्णमूर्ति, खानदान फिल्म से लता मंगेशकर तथा प्रेम पर्वत फिल्म से लता मंगेशकर की आवाज में चंद सदाबहार पुराने हिंदी फिल्मी नगमों का। शास्त्रीय रागों पर आधारित कार्यक्रम राग रंग कल शाम 4:30 पर, आकाशवाणी ईटानगर से अनुप्रसारित हिंदी में समाचार कल शाम 4:45 पर, तत्पश्चात अंग्रेजी में समाचार 4:55 पर। कल शाम 5 बजे दैनिक मनपा कार्यक्रम नमधर लेरिम के तहत सुनिए प्रसिद्ध भारतीय आचार्य शांतिदेव द्वारा रचित अ गाइड टू द बोधिसत्वास वे ऑफ लाइफ पर आधारित शिक्षा का श्रृंखला। दैनिक मुख्य सूचना मनपा में श्री कुंचो संगे की से कल शाम 5:30 पर, 5:35 पर साप्ताहिक मनपा कार्यक्रम रिक्षुं लेरिम। कल शाम 6 बजे लेरिम सेरा 6:10 पर कार्यक्रम जरोखा। कल शाम 6:20 पर शेदुन लेरिम के तहत सुनिए तावंग मठ के गेलोंग दोर्जी नमगे और साथियों से क्यूंचक सुम्पा, लामा छोयपा, तुंगशा, मंड्रे और चंद्रजिक छोगा। आकाशवाणी दिल्ली से अनुप्रसारित हिंदी में समाचार कल शाम 7 बजे, तत्पश्चात अंग्रेजी में समाचार 7:05 पर। कल शाम 7:10 पर साप्ताहिक कार्यक्रम महफिले कव्वाली, जिसके तहत आप आनंद ले सकेंगे ये दिल आशिकाना और क्या यही प्यार है फिल्मों से दो कव्वालियां। साप्ताहिक कार्यक्रम सामुदायिक गीत एवं गीत पाठ के तहत सुनिए सिंधी भाषा में ए मांझे वतन गीत का पाठ कल शाम 7:25 पर। कल शाम 7:45 पर आकाशवाणी ईटानगर से अनुप्रसारित प्रादेशिक समाचार, तत्पश्चात रीजनल न्यूज 7:50 पर। 7:55 पर कार्यक्रम देशभक्ति गीत के तहत आनंद लीजिए लक्ष्य फिल्म से एक देशभक्ति गीत का। कल रात्रि 8 बजे भारत के माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के 136वें मन की बात कार्यक्रम का मनपा संस्करण श्री थुप्तन ताशी से। आकाशवाणी दिल्ली से अनुप्रसारित स्पॉट स्कैन कल रात्रि 8:30 पर, तत्पश्चात समाचार संध्या 8:45 पर तथा रात्रि 9 बजे News@9। कल रात्रि 9:15 पर हमारे केंद्र से अगले दिन प्रसारित होने वाले चंद कार्यक्रमों के संक्षिप्त विवरण के साथ रात्रि 9:00

16 मिनट पर कल के तमाम कार्यक्रम समाप्त होंगे। श्रोताओं, कार्यक्रम जरोखा के तहत अभी आपने सुना हमारे केंद्र से प्रसारित होने वाले आज के शेष कार्यक्रम तथा कल प्रसारित किए जाने वाले कार्यक्रमों के बारे में। इन्हीं कार्यक्रम संबंधी जानकारियों के साथ कार्यक्रम जरोखा यहीं समाप्त होता है। आपकी सेवा में ये आकाशवाणी का तवांग केंद्र है। समय संध्या के 6:20 होने वाले हैं। श्रोताओं, हमारा अगला कार्यक्रम जीदुन लेरिम सुनिए चंद ही पलों में। कृपया हमारे साथ बने रहें।

उच आकाशवाणी तवांग बोर लांगे थाम नुप्ति छु जक रोखनि कर्म खलियोनी लांगे ना दादे शिक्षे दन लेरिम चित को छुदुर लांगे ना देशु लेरिमा ना नेताजी सुभाष चंद्र बोस आवासीय विद्यालय शरू लपटक लुपटू तेंजिन यांगजुमसी क्रिस्टोनु क्याब्रो चुनचक सोम्पा कांगलोमा डोलमा केवे चेप्टन तेंसिक मनलम निंगोवा मनलम इजिक शुचे पद्मश्री खिनमे रिम्बुचे निंग खिनमे कोनपाक किंदुन पुलहंगे पासी तोनु बेजर गुरु सन्नांसा

रिमा ना नेताजी सुभाष चंद्र बोस आवासीय विद्यालय शरु लापटाक लुपटू तेंजेन यांगजोमसी ख्रिस्तोनु क्याप्रो क्युंचक सुम्पा कांगलोमा डोलमा क्यावे जेप्तन तेंजिक मनलम निंगो मनलम इजिशुचे पद्मश्री खिनमे रिम्बुचे निंग खिनमे गोनपाक केंदुन हंगे बासी तोनु बेजर गुरु सन्नाबर हंगेना उद्दम्बुचे आकाशवाणी तवांग तेष्णुप्तिक मन बाकलेरिम बना छाजांग दोज उच आकाशवाणी तवा इम्बर हांगे छांग मुशुक बुलेरिम हिंदी का सिंगर छुजे निश्चे छुजे निश्चे थिंग कार्मिलेंगे इंजी का सिंगर आकाशवाणी दिल्ली के रिले सन्नांग सा।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुकेश कुमार। कॉकरोच जनता पार्टी CJP ने सरकार द्वारा मांगों को स्वीकार किए जाने के बाद आंदोलन को तत्काल प्रभाव से समाप्त करने की घोषणा की है। केंद्रीय मंत्री जगत प्रकाश नड्डा और जितेंद्र सिंह के साथ CJP प्रतिनिधिमंडल की तीसरे दौर की वार्ता के बाद पार्टी प्रवक्ता आशुतोष रांका ने ये घोषणा की।
1: तमाम मांगे जो हमारी थी वो मान ली गई है, तो हम इमीडिएट इफेक्ट से प्रोटेस्टर्स से रिक्वेस्ट करते हैं कि आप विड्रॉ करें, पीसफुली अपने घर वापस जाएं और आगे की जो भी हमारी रणनीति होगी या बातचीत होगी उससे हम आपको अवगत कराएंगे।
0: श्री नड्डा ने कहा कि सरकार ने प्रदर्शनकारियों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं करने की मांग स्वीकार कर ली है।
2: सबसे पहली बात तो ये है कि कोई भी एक्शन FIR न हो और अगर है तो वो विड्रॉ हो और उसको विड्रॉ करने की बात कोई भी एक्शन नहीं होगा, इस बात को सरकार ने स्वीकारा है जो प्रोटेस्टर्स के साथ प्रोटेस्ट के दौरान हुआ है। उसी तरीके से फ्यूचर में भी जो ऑर्गेनाइजर्स हैं और प्रोटेस्टर्स हैं उनका इस एक्टिविटी के लिए कोई भी उन पर आगे केस नहीं होगा, इस बात को हम लोगों ने माना है।
0: श्री नड्डा ने कहा कि परीक्षा प्रणाली में सुधार के लिए दिए गए CJP के सुझावों पर विचार किया जाएगा।
2: हम एजुकेशन के एग्जामिनेशन के रिफॉर्म्स के लिए जो आपका चार्टर है उस पर हम गहन चिंतन भी करेंगे और आपके डेलीगेशन के साथ बातचीत करके जो कुछ भी हम डेलिबरेट कर सकेंगे वो हम करने का प्रयास करेंगे।
0: आत्महत्या करने वाले छात्रों के परिवारों को मुआवजे के मुद्दे पर श्री नड्डा ने कहा कि सरकार को पूरी सहानुभूति है और सरकार नियमों के अनुसार अधिकतम मुआवजा सुनिश्चित करेगी। इससे पहले शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपना इस्तीफा सौंप दिया। श्री प्रधान ने कहा कि पिछले 10 दिन से छात्रों के विरोध प्रदर्शन के बाद उत्पन्न स्थिति से व्यथित हैं। उन्होंने कहा कि ये उनके लिए व्यक्तिगत प्रतिष्ठा का विषय नहीं है। श्री प्रधान ने कहा कि जंतर मंतर और पूरे देश में वर्तमान स्थिति का राष्ट्र विरोधी ताकतें लाभ ना उठा सकें, इसलिए उन्होंने प्रधानमंत्री को अपना इस्तीफा सौंपने का निर्णय लिया। श्री प्रधान ने कहा कि NEET UG परीक्षा में अनियमितताओं के बाद सरकार ने जांच CBI को सौंप दी और परीक्षा रद्द कर दी। भारतीय जनता पार्टी ने संसद में नीट पेपर लीक मुद्दे पर चर्चा से कांग्रेस के पीछे हटने का आरोप लगाया है। नई दिल्ली में पार्टी प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी ने आरोप लगाया है कि कुछ लोगों का एकमात्र उद्देश्य राजनीतिक लाभ उठाना है, न कि छात्रों की चिंताओं का समाधान करना। दिल्ली पुलिस ने भारी भीड़ और यातायात जाम के कारण लोगों को नई दिल्ली क्षेत्र की ओर जाने से बचने की सलाह दी है। पुलिस ने यात्रियों को निर्देश दिया है कि वे देरी से बचने और सुगम यात्रा सुनिश्चित करने के लिए वैकल्पिक मार्गों का प्रयोग करें। इस बीच दिल्ली मेट्रो ने सभी 18 मेट्रो स्टेशनों के प्रवेश द्वार यात्रियों के लिए खोल दिए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तर प्रदेश के सारनाथ को यूनेस्को विश्व धरोहर सूची में शामिल किए जाने पर प्रसन्नता व्यक्त करते हुए इसे हर भारतीय के लिए गर्व का क्षण बताया। श्री मोदी ने कहा कि सारनाथ का भगवान बुद्ध से गहरा संबंध है। प्रधानमंत्री ने कहा कि इससे दुनिया भर के लोग सारनाथ आने और भगवान बुद्ध के आदर्शों से जुड़ने के लिए प्रेरित होंगे। प्रधानमंत्री कल सवेरे 11 बजे आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों के साथ अपने विचार साझा करेंगे। कार्यक्रम का प्रसारण आकाशवाणी और दूरदर्शन के समूचे नेटवर्क, आकाशवाणी समाचार वेबसाइट और न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप पर किया जाएगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू मोल्दोवा, उत्तरी मैसिडोनिया और रोमानिया की यात्रा पूरी करने के बाद नई दिल्ली के लिए रवाना हो गई हैं। यात्रा के अंतिम चरण में उन्होंने रोमानिया के राष्ट्रपति निकोसियर डैन के साथ व्यापार, निवेश, रक्षा, डिजिटल प्रौद्योगिकी, शिक्षा, नवीकरणीय ऊर्जा और संस्कृति

शक्ति सहित विभिन्न क्षेत्रों में व्यापक चर्चा की। हरारे में दूसरे T20 क्रिकेट मैच में भारत ने जिम्बाब्वे को 220 रन का लक्ष्य दिया है। ईशान किशन ने 81 और तिलक वर्मा ने नाबाद 60 रन की शानदार पारी खेली। ताजा समाचार मिलने तक जिम्बाब्वे ने 7वें ओवर में 4 विकेट पर 49 रन बना लिए थे। अनाहत सिंह विश्व जूनियर स्क्वाश चैंपियनशिप के महिला सिंगल्स फाइनल में पहुंच गई हैं। फाइनल में उनका सामना आज मिस्र की रुकैया सलीम से होगा। अनाहत सिंह जोशना चिनप्पा के बाद इस प्रतियोगिता के फाइनल में पहुंचने वाली दूसरी भारतीय हैं। मौसम विभाग

0: आकाशवाणी दिल्ली से अनुप्रसारित, अभी आप सुन रहे थे अंग्रेजी में समाचार। आपकी सेवा में ये आकाशवाणी का तवांग केंद्र है। समय संध्या के 7:10 हुए हैं। लीजिए श्रोताओं, प्रस्तुत है स्वास्थ्य से संबंधित साप्ताहिक कार्यक्रम स्वास्थ्य चर्चा। इस कार्यक्रम के तहत आज सुनिए खंडरो जोवा जम्मो जिला अस्पताल तवांग के एनसीडी सेल के साइकोलॉजिस्ट मिस लुपसंग यूटन से धूम्रपान सेवन के दुष्परिणाम विषय पर हुए एक साक्षात्कार। साक्षात्कार करता है आकाशवाणी तवांग की हिंदी उद्घोषिका तुर्जी ड्रमा।
1: नमस्कार श्रोताओं, स्वागत है आप सभी का आकाशवाणी तवांग से प्रसारित कार्यक्रम स्वस्थ चर्चा में। श्रोताओं, आज हमारे साथ स्टूडियो में उपस्थित है खंडो डोवा संगमो जिला अस्पताल तवांग के डीटीसीसी सेल एनसीडी के साइकोलॉजिस्ट लोपसांग इटन जी। तो लोपसांग इटन जी, सबसे पहले आपका हमारे इस कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है।
2: थैंक यू।
1: तो श्रोताओं, आज हम लोपसांग इटन जी से तंबाकू का सेवन करने से हमारे शरीर में क्या क्या नुकसान होते हैं, तो इस बारे में हम इनसे चर्चा करेंगे। तो लोपसांग इटन जी, आप सबसे पहले हमारे श्रोताओं को बताइए कि तंबाकू का सेवन करने से हमारे शरीर में सबसे ज्यादा नुकसान क्या क्या होता है।
2: टबैको सेहत के लिए अच्छा नहीं है। ऐसा नहीं है कि टबैको सिर्फ आपके सेहत को नुकसान पहुंचाता है, उसके साथ साथ बहुत ज्यादा चीजें हैं, जैसे कि आपका सोशल लाइफ हो गया, देन आपका इकोनॉमी हो गया, घर को लेकर एक्सपेंसेस हो गया, तो सभी चीजों में इफेक्ट करते हैं। आप लोग ने भी देखा होगा, आए दिन छोटे छोटे बच्चे रहते हैं, काफी लोग स्मोक करके घूमते रहते हैं, तो उन सब चीजों को टबैको कैसे एक चिल्ड्रंस के लाइफ में कैसे पेनिट्रेट करके अंदर घुस गया है ना, वो सब चीजें ना हो। जो मोस्ट कॉमन इन्फॉर्मेशन है, जो आई थिंक सबको पता है कि टबैको कॉजेस कैंसर। अगर आप तंबाकू का सेवन करेंगे तो उससे क्या होगा, आपको कैंसर होने का हाई चांसेस रहता है। सो कैंसर मे भी थोड़ा लेटेस्ट स्टेज में होगा, लेकिन उससे पहले और भी बहुत ज्यादा चीजों से लोगों को गुजरना पड़ता है। मान के चलिए कि सिगरेट का से कोई बच्चा है, से सपोज 11-12 साल का है ना, उसको क्या हुआ कि उसका फैमिली में किसी ने बोला कि जाओ मेरे लिए तंबाकू लेके आओ या फिर जाओ मेरे लिए सिगरेट लेके आओ। फैमिली में पिताजी रहते हैं, अंकल्स रहते हैं, भैया रहते हैं, जो खुद दुकान नहीं जाते तो बच्चा को भेजते थे कि जाओ खरीद के लेके आओ। तो ऐसे में बच्चे चले जाते हैं दुकान पे, वो लेकर आते हैं, जैसे कि आपने कहा उनको पता होता है कि ये हानिकारक है सेहत के लिए, फिर भी उन लोगों के दिमाग में ये रहता है कि अगर ये सच में इतना हानिकारक है तो मेरा जो पिताजी है या फिर मेरा जो भैया है या फिर मेरा जो अंकल है क्यों यूज करते हैं, तो उससे क्या होता है, एक सेंस ऑफ क्यूरियोसिटी जाग जाते हैं उस बच्चे के मन में। तो वो क्यूरियोसिटी को एक्सप्लोर करने के लिए जब वो लोग शुरुआत करते हैं, तो तभी क्या होता है कि एक बार ट्राई किया, अच्छा नहीं लगा होगा, फर्स्ट टाइम में चक्कर आया होगा, उल्टी लगा होगा, व्हाटएवर रीजन, लेकिन क्या रहता है कि उनके मन में एक चीज रहती है, ओ मैंने आज कुछ नया ट्राई किया है, तो उसकी वजह से वो क्या करते हैं, उसको दूसरी बार ट्राई करते हैं, तीसरी बार ट्राई करते हैं, ऐसा ही करके धीरे धीरे धीरे क्या हो जाता है, उनको लत लग जाता है, क्योंकि सिगरेट भी ऐसा माना जाता है कि काफी एडिक्टिव है, उसमें निकोटिन रहता है। तो क्या होता है कि सिंस निकोटिन काफी एडिक्टिव सब्सटेंस है, तो उसका वजह से क्या होता है कि इंसान को पता है कि नहीं लेना चाहिए, फिर भी वो खुद को रोक नहीं पाते और वो कंटिन्यूसली स्मोक करते रहता है या फिर टबैको को च्यू करते रहता है। सो फर्स्ट प्रॉब्लम जो उसमें हम लोग को दिखाई देता है वो है ब्रेथ, उनका जो ब्रेथ है वो स्मेल करता है ना, एंड अगर आप च्यू कर रहे हैं तो आपका दांतों में पीलापन आ जाता है, फिर धीरे धीरे क्या हो जाता है कि सांस लेने में प्रॉब्लम हो सकता है। एट द सेम टाइम बहुत ज्यादा चीजें होते हैं, घर में से सपोज किसी ने देख लिया है कि बच्चे सिगरेट पी रहे हैं या फिर तंबाकू का सेवन कर रहे हैं, तो क्या होता है कि माँ बाप डांटते हैं, कुछ घरों में तो पीटना भी चलता है, एंड एट द सेम टाइम मम्मी और पापा के बीच में यू नो एक ब्लेम गेम सा हो जाता है कि तुमने बच्चों को अच्छे से नहीं देखा है ना, बीइंग ए मदर तुमको ख्याल रखना चाहिए था। फिर मम्मी बोलेगा मे बी कि सिंस मेरा घर का बहुत ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तो बीइंग ए फादर तुमको भी ज्यादा स्ट्रिक्ट होना चाहिए, तो घरों में ये सब प्रॉब्लम भी रहता है। एंड धीरे धीरे धीरे अगर आप उसको कंटिन्यूसली यूज करते रहेगा तो कुछ कुछ सिम्टम्स है, कुछ कुछ लक्षण है जो आप खुद ही नोटिस कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आप कितना चल पा रहे हैं, एक नॉन स्मोकर को ब्रीदिंग में इतना प्रॉब्लम नहीं होता है कम्पेयर टू एक स्मोकर। आप बहुत जल्दी चलते वक्त थक जाएंगे, आपको लगेगा कि आपको सांस अच्छे से नहीं मिल रहे हैं, तो ये सब इनिशियल प्रॉब्लम है जो आपको दिखाई देगा। धीरे धीरे धीरे अगर आप फिर भी टबैको का कंजम्पशन करते रहेंगे, एंड माइंड यू कि टबैको को जब आप कंजम्पशन करते हैं, आप सिगरेट पीते हैं या फिर तंबाकू खाते हैं, तो आप टॉलरेंस बिल्ड करते जाते हैं। आज आप एक सिगरेट पी रहे हैं तो 2 साल बाद भी आप एक सिगरेट ही पियेंगे, ऐसा नहीं है। टॉलरेंस डेवलप करना मतलब क्या है कि आपका बॉडी, आप जो भी कंज्यूम कर रहे हैं उसका टॉलरेंस बढ़ जाते हैं, तो क्या होता है कि आज आप एक सिगरेट पी

0: पियेंगे वन वीक बाद, अब दो सिगरेट पियेंगे दिन में, एंड धीरे धीरे धीरे क्या हो जाएगा, दिन में एक पैकेट, दिन में दो पैकेट, तो वो सब हो जाते हैं। उन सब चीजों के लिए क्या होता है कि पैसा भी काफी खर्चा होता है। एट द सेम टाइम से सपोज आपको कुछ प्रॉब्लम हो गया है, जैसे कि हम लोग बात कर ही रहे थे कैंसर को लेके, आपका लंग्स में इन्फेक्शन हो गया सपोज किसी चीज को लेके, तो उसमें क्या होता है ट्रीटमेंट का कॉस्ट भी बहुत ज्यादा है।
1: इस बीच मैं भी वही बोलना चाहूंगी कि हालांकि सिगरेट पीना, धूम्रपान करना और तंबाकू का सेवन करना सबके लिए हानिकारक है, ये सब जानते हैं
0: जी,
1: ये गलत काम है सब जानते हैं, लेकिन बच्चों को ऐसा लगता है कि हाँ ये गलत काम है और किसी बड़ों के नजर में नहीं पीने से हो गया, किसी को क्या पता चलेगा, ऐसा लगता है। तो आप बताइए कि इससे कैंसर होता है तो कहाँ कहाँ किस तरह के कैंसर होते हैं, क्योंकि आपको पता है हमारे रेडियो के बहुत सारे लिसनर्स हैं और हर सैटरडे को हमारा स्वास्थ्य चर्चा, हम हेल्थ पर फोकस करते हुए एक प्रोग्राम करते हैं
0: जी।
1: तो शायद सुन के हमारे इस चर्चा का और चर्चे को मतलब और फ्रूटफुल रहे, क्योंकि किसी को कैंसर होते हैं तो वो बचते नहीं है
0: जी,
1: तो ऐसा सोच के शायद लोगों में और असर पड़ जाए। तो आप बताइए कि कैंसर होते हैं तो किस तरह के कैंसर होते हैं धूम्रपान करने के और तंबाकू का सेवन करने से।
0: अच्छा देखिए, कैंसर तो ऐसा नहीं कि सिर्फ एक या दो तरीका के कैंसर आपको हो सकते हैं। से सपोज आप स्मोक कर रहे हैं तो हायर चांसेस है आपका लंग्स में प्रॉब्लम हो सकता है, आपका लंग्स कैंसर होने का चांसेस है। ऐसे सपोज आप तंबाकू चबा रहे हैं, जर्दा वगैरह जो आजकल काफी मार्केट में अवेलेबल रहता है, खैनी वगैरह हो गया, वो सब अगर आप खा रहे हैं तो उससे आपका ओरल कैंसर होने का हायर चांसेस रहता है। आप मूवीज में पहले काफी बार दिया जाता है, आई डोंट नो इन देते हैं कि नहीं, मूवी से पहले एक मे मुकेश करके है ना एक वार्निंग, तो वहां पे आपने देखा होगा कि उनके मुंह में कैंसर था, है कि नहीं। एंड कभी कभी आपके गले में कैंसर हो सकता है, क्योंकि अगर आप स्मोक कर रहे हैं तो आपका जो धुआं है वो आपके एसोफेगस से ही जाता है। एट द सेम टाइम सिर्फ कैंसर ही नहीं, क्योंकि आई नो कैंसर बहुत जानलेवा बीमारी है, लेकिन उसके अलावा और भी काफी सारी बीमारियां हैं जो जानलेवा है। से एग्जांपल आप स्मोक कर रहे हैं तो स्मोक करने से क्या होता है कि आपका स्ट्रोक आने का चांसेस हायर रहता है, आपका हार्ट अटैक आने का चांसेस हायर रहता है। एंड आई एम वेरी श्योर कि किसी को भी इन सब बीमारियों का शिकार नहीं होना होगा, अगर नहीं होना है तो इट्स बेटर कि तंबाकू से जितना हो सकते दूरी बनाए रखे। एंड काफी लोगों का सोचना ये भी रहता है कि बहुत लोग हैं, मैंने लाइफ में बहुत लोगों देखा है तंबाकू खाते हुए, पर उनको तो कैंसर नहीं हुआ तो शायद मुझे भी नहीं होगा, ये भी सोच या फिर गलत फहमी आप जो भी कहे काफी लोगों पे रहता है कि नहीं। तो उनको अभी नहीं हुआ उसका मतलब ये नहीं है कि उनको बाद में नहीं होगा, नॉट नेसेसरी कि डेफिनेटली होना ही है, बट आपका चांसेस जो होते हैं वो काफी ज्यादा बढ़ जाता है, हायर रहता है।
1: और हमारा आजकल का लाइफस्टाइल ऐसे है कि कुछ भी बीमारी बहुत जल्दी आ जाती है।
0: बीमारी जल्दी क्यों हो जाती है, क्योंकि हर किसी को काम करना है कि नहीं, सब लोग अपने काम में इतने व्यस्त रहते हैं कि अपने हेल्थ पे वो ध्यान ही नहीं दे पाते। एंड एट द सेम टाइम आपका जो वर्कलोड है वो आपको काफी स्ट्रेस देता है, एंड स्ट्रेस में कोई भी इंसान अच्छी तरह का फंक्शन नहीं कर पाता है, सो जिसके वजह से क्या होता है कि बीमारी में और ज्यादा प्रॉब्लमेटिक बन जाते हैं
1: जी। मैंने जैसे कि पहले कही कि धूम्रपान करना, तंबाकू का सेवन करना सबके लिए हानिकारक है, बच्चे हो या बूढ़े हो, जवान हो, सबके लिए। लेकिन शुरुआत जो बच्चों से होता है, बच्चों नादानी में से ही, न समझ में से ही, वो सही गलत का पहचान नहीं होता है, तो कुछ ना कुछ गलत कर बैठते हैं और आगे चलकर अपने परिवार को, अपने आप को और यहाँ तक कि हमारे समाज को भी नुकसान पहुँचाते हैं। तो इसमें बच्चे तो ना समझ होते हैं, तो इसमें मेरा ख्याल से जिसे आपने बताया कि परिवार का भी बहुत बड़ा हाथ है, मतलब पेरेंट्स का, गार्जियंस का, तो उसको पॉकेट मनी ज्यादा दे देते हैं, तो पॉकेट मनी, हाँ मेरे पास एक्स्ट्रा है, मेरा भैया ऐसे किसी कोई दोस्त ऐसे कर रहा था धूम्रपान करते हुए, मैंने देखा है मैं भी कर लूं ऐसे सोच के। तो मेरा ख्याल से इसमें पेरेंट्स के भी बहुत बड़ा हाथ है। तो मैं चाहती हूँ कि हमारे इस चर्चा को सुनकर वो अपने बच्चों पर भी ज्यादा फोकस करे, ध्यान दे, ताकि वो ऐसा गलत काम करना बैठे ना। और कार्यक्रम को आगे बढ़ते हुए, जैसा कि धूम्रपान या तंबाकू का सेवन करना जानलेवा कोई बीमारी को आप इनविटेशन देना, सेम बात ही है
0: जी।
1: और सबके लिए ही हानिकारक है, बहुत खतरनाक जानलेवा बीमारी हो सकते हैं उससे। और मानते हैं अभी आधुनिकता का दौर है, बेशक समय के साथ चलना चाहिए, आधुनिक होना चाहिए, लेकिन कुछ लोग इतना आवश्यकता से ज्यादा आधुनिक हो जाते हैं। तो आजकल की लड़कियां भी धूम्रपान करते हैं, तो मैंने लोगों को अक्सर ऐसा कहते हुए सुना है कि लड़कियों को ज्यादा इससे प्रभाव पड़ती है, तो वो कहां तक सही है।

0: होते हैं ना.
1: नॉट नेसेसरी कि आप पहले तंबाकू का ही सेवन करेंगे उसके बाद ही जाके ऐसा होगा करके, बट जो चांसेस है जैसे कि हम बार बार कह रहे हैं जो चांसेस है वो काफी हायर रहता है. एंड काफी बार देखा गया है कि जितने लोग भी ड्रग्स का सेवन करते हैं, हेरोइन में डिपेंडेंट होते हैं, उन लोगों ने कहीं ना कहीं शुरुआती सब्सटेंस उनका टबैको ही रहता है. सो आई थिंक हम कह सकते हैं कि यू नो चांसेस आर हायर ऐसा कर.
0: जी जी जी. और एक सवाल मेरे मन में आया कि कुछ लोग ऐसा होता है पब्लिक प्लेसेस पे सार्वजनिक स्थानों पर वो खुलेआम धूम्रपान करते हैं
1: जी,
0: तो वो अपने आप को तो हानि कर ही रहे हैं, नुकसान पहुंचा ही रहे हैं, लेकिन आसपास में पब्लिक प्लेस है ऑब्वियसली, वहाँ कुछ और लोग भी होंगे
1: जी,
0: तो उसका जो सेकंड हैंड धुआं होते हैं उससे जाके जो लोग आसपास में रहते हैं उसको ज्यादा असर पड़ती है, तो इस पर आप क्या कहेंगे?
1: जी देखिए, ये जो सेकंड हैंड स्मोक है ना
0: जी,
1: शायद काफी लोगों को पता नहीं होगा, क्योंकि बहुत सारी चीजें हैं ना, अगर आप करो तभी आप भुगतेंगे, अगर आप ना करो तो आप ना भुगतेंगे
0: जी,
1: किसी लोगों का ये बिलीव रहता है. बट सिगरेट का केसेस में, नॉट नेसेसरी च्यूइंग टबैको में, बट स्मोकिंग टबैको जो होता है जिसको आप स्मोक फॉर्म में लेते हो, उन केसेस में क्या होता है कि सपोज आप स्मोक कर रहे हैं एंड हम या फिर कोई भी आपका क्लोज प्रॉक्सिमिटी में, जैसे आपने कहा पब्लिक प्लेसेस में, आए दिन हम देखते रहते हैं कि दुकानों में लोग आते हैं सिगरेट खरीदते हैं एंड वही जला के यू नो पीना स्टार्ट कर देते हैं, तो उस वक्त दुकान में जो रहते हैं या फिर एट द सेम टाइम जो दूसरे कंज्यूमर्स है जो दुकान आते हैं उनको भी वो धुआं काफी हद तक अफेक्ट करता है. एंड मोस्टली अगर आप छोटे बच्चे हैं, अगर आप प्रेगनेंट वुमेन है, अगर आप ओल्ड एज वुमेन है, या फिर अगर आपको अस्थमा है, तो आपको ज्यादा वो प्रॉब्लम देगा जो सेकेंड हैंड स्मोक है वो. एंड सेकेंड हैंड स्मोक से भी आपका कैंसर होने का इक्वल चांसेस रहता है जितना आप फर्स्ट हैंड स्मोकर को रहता है. तो आई थिंक ये जो चीज है हर किसी को पता रहना चाहिए कि नॉट नेसेसरी ये सिगरेट आपको तभी इफेक्ट करेगा जब आप खुद पी रहे होंगे, जब आप खुद उसका सेवन कर रहे होंगे. अगर कोई और कर रहा है एंड आप उसके पास है तब भी आपको वो इक्वली हार्मफुल इफेक्ट करेगा. सो इसीलिए लोगों को ये जानना बहुत जरूरी है कि आपके पास पूरा राइट है किसी को मना करना कि आप मेरे सामने यहाँ स्मोक मत कीजिए. आपको कभी हेजिटेशन नहीं रहना चाहिए कि सिंस वो स्मोक कर रहे तो मैं क्यों इंटरफेयर करूं, है ना, मैं क्यों बोलूं, सिंस वो आपको इफेक्ट कर रहे हैं तो एंड आपका इक्वल राइट बनता है, क्योंकि आपके हेल्थ के बारे में तो आप कंसर्न रहेंगे ना, है क्या नहीं. तो विदाउट हेजिटेशन आप कभी भी किसी को बोल सकते हैं कि यहाँ स्मोक ना कीजिए क्योंकि ये मेरे सेहत के लिए अच्छा नहीं.
0: जी जी जी. हम अभी तक बात कर रहे हैं कि तंबाकू का सेवन नहीं करना चाहिए, हानिकारक है, धूम्रपान नहीं करना चाहिए, लेकिन दुकानों में तो शायद मेरे ख्याल से खुले आम बिकते हैं
1: जी.
0: तो इस पर आपके डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ और अन्य जो आपके साथ कुछ और डिपार्टमेंट्स भी होते हैं, तो आप मिलकर उनके लिए क्या कार्रवाई करते हैं, क्या उनके लिए कोई कानून बनी है?
1: जी देखिए, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से कुछ कानून है, कुछ प्रोविजंस है, जैसे आपने कहा कि खुलेआम बिकते हैं उस पे कम्प्लीटली रोक लगाना पॉसिबल नहीं है, इसीलिए सर्टेन प्रोविजंस रखा गया है ताकि किसी हद तक होने से भी उसको कंट्रोल कर पाए. तो उसी के अंदर एक एक्ट आता है कोतवा करके, सिगरेट एंड अदर टोबैको प्रोडक्ट एक्ट करके, जो 2003 में इम्प्लीमेंट किया गया था. जैसे कि हमने कहा है सर्टेन प्रोविजंस है, सर्टेन सेक्शंस है, जैसे कि कुछ कुछ सेक्शंस है कि आप पब्लिक स्पेस में स्मोक नहीं कर सकते. अगर आप पब्लिक स्पेस में स्मोक कर रहे हैं तो आपके अगेंस्ट जुर्माना लिया जा सकता है, आपको इम्प्रिजनमेंट हो सकता है. एंड कुछ ऐसे एक्ट भी है, सपोज अगर आप एक माइनर है तो माइनर को दुकान वाले कभी भी टोबैको का सेल नहीं कर सकते हैं. एंड एट द सेम टाइम माइनर्स के द्वारा भी, सपोज आप एक पेरेंट है, आपका एक शॉप है, वहां पे आप अपने बच्चे को रखे उसके द्वारा भी नहीं सेल कर सकते हैं. तो उस पे भी क्या है, रोक लगाया गया है, उस पे भी फाइन्स है, उस पे भी यू नो आपका इम्प्रिजनमेंट हो सकता है. एंड एट द सेम टाइम आप लोगों ने देखा ही होगा कि एवरी टोबैको का जो पैकेट रहता है, बीट सिगरेट या तो फिर सादा, उसमें क्या होता है कि वार्निंग साइन दिया रहता है कि टोबैको कॉजेस कैंसर या फिर टोबैको इज इंजूरियस टू हेल्थ. सो बिना वार्निंग्स का आप कभी टोबैको का सेल नहीं कर सकते हैं. एंड आप कभी इनकरेज नहीं कर सकते किसी को कि टोबैको कंजम्पशन करो, या फिर उसको आप स्पॉन्सर नहीं कर सकते, आप उसका मार्केटिंग नहीं कर सकते. ये सब सर्टेन प्रोविजंस है जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इम्प्लीमेंट किया गया है ताकि इन सब चीजों में रोक लगाया जा सके.
0: तो लबसंग जी, आज आपने हमारे स्टूडियो में आए और टोबैको से क्या क्या हानि होते हैं इसके बारे में खूब सारी जानकारी दी, तो मैं इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगी. थैंक यू वेरी मच.
1: थैंक यू.
2: श्रोताओं, अभी आपने सुना खंडरो डुवा जंगमो जिला अस्पताल तावंग के एनसीडी सेल के साइकोलॉजिस्ट मिस लुपसंग युटन से धूम्रपान सेवन के दुष्प्रभाव विषय.

0: हुए एक साक्षात्कार। इसी के साथ ही स्वास्थ्य से संबंधित साप्ताहिक कार्यक्रम स्वास्थ्य चर्चा समाप्त हुआ। आपकी सेवा में ये आकाशवाणी का तवांग केंद्र है। समय संध्या के 7:30 हुए हैं। श्रोताओं, हमारे अगले कार्यक्रम की ओर बढ़ने से पहले लीजिए सुनिए राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण द्वारा जारी एक जरूरी संदेश।
1: सुनो सुनो, एक परिवार की कहानी, डॉक्टर के सामने जिनसे हुई नादानी।
2: तुम रिपोर्ट्स लाई हो ना?
3: नहीं, मुझे लगा तुम लाए हो।
2: तुम हो ही भुलक्कड़।
3: भूल बस इतनी है कि तुमसे शादी कर ली।
1: लड़िए मत, जानिए आभा के बारे में।
3: आभा?
1: जी हाँ, मोदी सरकार की डिजिटल पहल जिसके तहत अब तक 86 करोड़ से अधिक नागरिक बनवा चुके हैं आभा, यानी आयुष्मान भारत हेल्थ अकाउंट, जहां आप अपने मेडिकल रिकॉर्ड सुरक्षित रख सकते हैं और जब चाहें और जहां चाहें ये रिपोर्ट्स दिखा सकते हैं। आभा, सेहत के सफर में आपका हम सफर। आज ही आभा ऐप डाउनलोड करें या डायल करें 1-4-4-7-7।
0: लीजिए श्रोताओं, अब प्रस्तुत है सुर और धुनों का साप्ताहिक कार्यक्रम साज और आवाज, जिसके तहत आज हम आनंद लेंगे तुमसे अच्छा कौन है फिल्म से एक गीत के साज और आवाज का। तो लीजिए प्रस्तुत है साज तुमसे अच्छा कौन है फिल्म से, जिसे सवारा है

तो लीजिए श्रोताओं, आनंद लीजिए इस सांस का जिसे सवारा है नदीम श्रवण ने कुमार सानू और अलका याग्निक के आवाज के साथ, जिसे शब्दों में पिरोया है समीर ने।

श्रोताओं, अभी आपने आनंद लिया तुमसे अच्छा कौन है फिल्म से एक गीत के साज और आवाज का। इसी के साथ ही सुर और धुनों का साप्ताहिक कार्यक्रम साज और आवाज अब खत्म होने को है। आपकी सेवा में ये आकाशवाणी का तवांग केंद्र है। समय संध्या के 7:45 होने वाले हैं। श्रोताओं, आपसे चंथी पलों में सुनिए आकाशवाणी ईटानगर से अनुप्रसारित प्रादेशिक समाचार, तत्पश्चात रीजनल न्यूज 7:50 पर। कृपया हमारे

नमस्कार, प्रादेशिक समाचार के साथ मैं मीनाक्षी मजुमदार। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने आज अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भेजे अपने त्याग पत्र में श्री प्रधान ने कहा कि पिछले 10 दिन की घटनाओं से उनका मन व्यथित था और उनके लिए व्यक्तिगत प्रतिष्ठा का विषय नहीं है। उन्होंने कहा कि भारत की युवा शक्ति देश की सबसे बड़ी ताकत है और युवाओं को भ्रम के कुचक्र में नहीं फंसने देंगे। श्री प्रधान ने कहा कि उन्होंने त्यागपत्र इसलिए दिया ताकि जंतर मंतर और देश में जो वर्तमान स्थिति बनी है उसका राष्ट्र विरोधी ताकतें लाभ ना उठा सके। त्यागपत्र में श्री प्रधान ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन, विश्वास और सहयोग के आभार व्यक्त किया। केंद्रीय कैबिनेट ने पेपर लीक और परीक्षा में गड़बड़ी के मामलों में सख्त सजा सुनिश्चित करने और फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाने के लिए एक ड्राफ्ट बिल को मंजूरी दे दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में संसद भवन परिसर में हुई कैबिनेट की बैठक में इस ड्राफ्ट बिल को मंजूरी दी गई। उम्मीद है कि इस प्रस्तावित कानून को अगले हफ्ते संसद में पेश किया जाएगा। इस बीच परीक्षा में बड़े सुधार लाने की दिशा में एक अहम कदम उठाते हुए नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने 47 अधिकारियों को नौकरी से हटा दिया है। सूत्रों के मुताबिक इनमें से कुछ अधिकारियों के खिलाफ कानूनी और आपराधिक कार्रवाई को भी जाएगी। इस प्रस्तावित बिल में पेपर लीक करने पर 10 साल की जेल और 10 करोड़ रुपए तक के जुर्माने का प्रावधान है। असम के मुख्यमंत्री हेमंत विश्व शर्मा ने कहा कि असम में जारी बाढ़ से मरने वालों की संख्या बढ़कर 62 हो गई है। क्षतिग्रस्त सड़क संपर्क के कारण बचाव दल अभी भी नाजिरा में लगभग 30% और शिवसागर में 20% बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों तक पहुँचने में असमर्थ है। शिवसागर और चिराईदेव जिले में स्थिति गंभीर बनी हुई है। 24,000 से अधिक लोग राहत शिविरों में रह रहे हैं, जबकि 833 गांवों के 10 लाख से अधिक लोग अचानक आई बाढ़ से प्रभावित हुए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज असम के मुख्यमंत्री हेमंत विश्व शर्मा से बातचीत की और राज्य में बाढ़ की स्थिति की समीक्षा की। सारनाथ की प्राचीन बौद्ध जगह को यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट में शामिल किया गया है। संस्कृति और पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने इसे भारत की सांस्कृतिक विरासत के लिए एक अहम पल बताया। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री शेखावत ने कहा कि सारनाथ शांति, ज्ञान और करुणा का एक सदाबहार प्रतीक है। उन्होंने कहा कि ये मानवता के लिए भारतीय सभ्यता के गहरे अत्याध्यात्मिक और दार्शनिक योगदान को दिखाता है। श्री शेखावत ने कहा कि इस लिस्ट में शामिल होने से देश की उस स्थायी भूमिका की फिर से पुष्टि होती है, जिसके तहत वो ऐसे विचारों का केंद्र रहा है जो पीढ़ियों से दुनिया को प्रेरित करते आ रहे हैं। एक सफल ऑपरेशन में कैपिटल पुलिस ने सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया की गंगा ब्रांच के पूर्व ब्रांच मैनेजर विवोटोवी जीमो को दिमापुर से गिरफ्तार किया। उन पर सरकारी सब्सिडी और लोन स्कीम के नाम पर कई लोगों के साथ धोखाधड़ी करने का आरोप है। इस बारे में जानकारी देते हुए ईटानगर पुलिस ने बताया कि 9 जुलाई 2026 को उन्हें एक लिखित शिकायत मिली थी। शिकायतकर्ता का आरोप था कि विवेकोबी जीमो ने उनके साथ धोखाधड़ी की है। इसमें उनके अपने 2,50,000 रुपए और आत्मनिर्भर पशुपालन योजना के तहत उन्हें मिलने वाली 2,00,000 रुपए की सब्सिडी की रकम शामिल थी। जांच के दौरान पता चला कि इस व्यक्ति ने 20 लोगों के साथ धोखाधड़ी की है और उनसे 8 करोड़ रुपए से ज्यादा की रकम हड़प ली है। गुरुवार को नशीले पदार्थों के खिलाफ चलाए गए एक और बड़े ऑपरेशन में ईटानगर के कैपिटल पुलिस की स्पेशल एक्शन टीम ने नीति विहार पुलिस स्टेशन के अंतर्गत आने वाली मोप 2 इलाके से एक संदिग्ध ड्रग तस्कर को पकड़ा। असम के रहने वाले इस आरोपी को एक किराए के मकान से पकड़ा गया, जहां से लगभग 9.73 ग्राम वजन की संदिग्ध हीरोइन वाली 46 प्लास्टिक की शीशे बरामद हुई। अरुणाचल प्रदेश मिनरल डेवलपमेंट एंड ट्रस्टिंग कॉरपोरेशन लिमिटेड

0: heroin weighing approximately 9.73 grams. Further investigation is on. That's all in the news bulletin. Namaskar.
1: आकाशवाणी ईटानगर से अनुप्रसारित आप सुन रहे थे रीजनल न्यूज। आपकी सेवा में ये आकाशवाणी का तवांग केंद्र है। समय संध्या के 7:55 हुए हैं। लीजिए प्रस्तुत है कार्यक्रम कौमे तराने। इस कार्यक्रम के तहत आज आनंद लीजिए 10 फिल्म से शंकर महादेवन, उदित नारायण, महालक्ष्मी अय्यर और डोमिनिक के आवाजों में एक देशभक्ति गीत का, जिसे शब्दों में पिरोया है समीर ने और संगीत से सवारा है शंकर एहसान लोई ने।

श्रोताओं, अभी आपने आनंद लिया 10 फिल्म से एक देशभक्ति गीत का। इसी के साथ ही कार्यक्रम कौमे तराने समाप्त हुआ। आपकी सेवा में ये आकाशवाणी का तवांग केंद्र है। समय रात्रि के 8 बजे हैं, यानी अब वक्त हो चला है कार्यक्रम पुराने हिंदी फिल्मी गीत का, जिसके तहत हम आनंद लेंगे आप श्रोताओं द्वारा व्हाट्सएप के जरिए फरमाइश चंद सदाबहार पुराने हिंदी फिल्मी नगमों का। तो लीजिए, कार्यक्रम का पहला फरमाइश प्रस्तुत है गांधी चौक बरमेर राजस्थान के बबलेश पनवार, डैनी पनवार और मनीष पनवार, रामदेवरा से दिनेश चौहान, खलीफों की बावरी के खुदा बख्श खलीफा से, जो कि है राजा जानी फिल्म से लता मंगेशकर के आवाज में। इस गीत को शब्दबद्ध किया है आनंद बख्शी ने और संगीतबद्ध लक्ष्मीकांत प्यारे लाल ने।

श्रोताओं, कार्यक्रम पुराने हिंदी फिल्मी गीत का दूसरा नगमा प्रस्तुत है शोर फिल्म से लता मंगेशकर और मुकेश के आवाजों में, जिसकी फरमाइश हमें प्राप्त हुई है पद्मा टॉकीज नापानगर मध्य प्रदेश के सुदर्शन शाह, पल्लवी शाह, प्रखर शाह, कुशाल शाह, नीति शाह, सुरभि शाह, अश्विन शाह, मंगला बहन शाह और राजेंद्र जी शाह से। इस गीत के रचनाकार है संतोष आनंद और संगीतकार लक्ष्मीकांत प्यारेलाल।

श्रोताओं, कार्यक्रम पुराने हिंदी फिल्मी गीत का अंतिम नगमा प्रस्तुत है भाभी फिल्म से मोहम्मद रफी की आवाज में, जिसे शब्दबद्ध किया है राजेंद्र कृष्ण ने और संगीतबद्ध चित्रगुप्त ने। और इस गीत की फरमाइश आई है रिंगनी छत्तीसगढ़ से दिनेश वर्मा और करुणा वर्मा की द्वारा। लीजिए, प्रस्तुत है आखिरी नगमा।

श्रोताओं, अभी आप आनंद ले रहे थे कार्यक्रम पुराने हिंदी फिल्मी गीत का, जिसके तहत हमने पेश किए आप सभी की व्हाट्सएप फरमाइशों पर आधारित कुछ बेहद प्यारे सदाबहार नगमे। अगर आप भी इस सुरों की महफिल में शामिल होना चाहते हैं तो हमें सुबह 5 बजे से शाम 5 बजे तक व्हाट्सएप जरूर करें। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 6033914908। साथ ही अपना नाम, पता, गीत के बोल और फिल्म का नाम लिखना ना भूलें, ताकि आपकी पसंद हमारे जरिए सब तक पहुंच सके। इसी के साथ आपकी फरमाइशों पर आधारित हमारा यह रोमानी और यादोबरा कार्यक्रम पुरानी हिंदी फिल्में गीत यहीं समाप्त होता है। फिर मिलेंगे कुछ और हसीन यादों, कुछ और नगमों के साथ। श्रोताओं, आपकी सेवा में ये आकाशवाणी का तवांग केंद्र है। समय संध्या के 8:15 होने वाले हैं। अब से चंद ही पलों में सुनिए आकाशवाणी ईटानगर से अनुप्रसारित अरुणाचल न्यूज रील। तत्पश्चात स्पोर्ट्स कैन आकाशवाणी दिल्ली से अनुप्रसारित 8:30 पर। तत्पश्चात 8:45 पर समाचार संध्या तथा न्यूज एट 9 रात्रि 9 बजे। कृपया हमारे साथ बने रहें।

0: सभी का स्वागत है आज के स्पोर्ट्स कैंप के इस एडिशन में। मैं हूं आपका दोस्त और होस्ट सिद्धार्थ सिंह और मेरे साथ हैं मेरे को होस्ट प्रशांत कुमार। आप सभी को हमारा नमस्कार।
1: नमस्कार।
0: अगले 15 मिनट में हम आपको रूबरू कराएंगे दिन भर की तमाम खेल खबरों से और जानेंगे क्या कुछ चल रहा है खेलों की दुनिया में खास। तो शुरू करते हैं स्पोर्ट्स कैन के साथ खेल की हर बात। सबसे पहले नजर डाल लेते हैं अब तक की खेल सुर्खियों पर।
1: भारत ने दूसरे 2020 मुकाबले में जिम्बाब्वे को हराकर श्रृंखला में अजेय बढ़त बना ली। सिद्धार्थ,
0: राष्ट्रमंडल खेलों में झंडू कुमार ने हैवीवेट पैरा पावर लिफ्टिंग में शानदार प्रदर्शन करते हुए भारत को पहला पदक दिलाया।
1: उधर मुक्केबाज जादूमणि ने राष्ट्रमंडल खेलों में किया दमदार आगाज, राउंड ऑफ 16 में जगह बनाई।
0: रूपा रानी टिर्की और पिंकी सिंह की भारतीय जोड़ी ने लॉन बॉल्स प्रतियोगिता में टोंगा को हराया। पुरुष सिंगल्स में पुतुल सोनोवाल का मुकाबला मलेशियाई खिलाड़ी से जारी।
1: उधर विश्व जूनियर स्क्वाश चैंपियनशिप में अनाहत सिंह ने किया ऐतिहासिक प्रदर्शन, बनाई फाइनल में जगह।
0: और यूथ हॉकी एशियन चैंपियनशिप में भारतीय पुरुष टीम ने ओमान और पाकिस्तान को शिकस्त दी।
1: कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं क्रिकेट से, जहां भारत ने बेहतरीन प्रदर्शन करते हुए जिम्बाब्वे को हराकर श्रृंखला में बढ़त बना ली है। हरारे में दूसरे T20 क्रिकेट मैच में भारत ने जिम्बाब्वे को 90 रन से हराकर श्रृंखला 2-0 की अजेय बढ़त बना ली है। ईशान किशन ने बेहतरीन प्रदर्शन किया, उसके दम पर उन्हें प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। सिद्धार्थ,
0: बिल्कुल, और अगर हम इस पर नजर डालें तो टॉस हारने के बाद भारत ने पहले बल्लेबाजी करते हुए निर्धारित 20 ओवर में 5 विकेट पर 219 रन बनाए। भारत से शानदार प्रदर्शन करते हुए विकेटकीपर बल्लेबाज ईशान किशन ने 2 छक्कों और 9 चौकों की मदद से 44 गेंद पर 81 रन की धमाकेदार पारी खेली
1: और उनका बखूबी साथ दिया है उपकप्तान तिलक वर्मा ने, जिसने 200 से अधिक की स्ट्राइक रेट से 29 गेंद पर नाबाद 60 रन बनाए। इस पारी के दौरान तिलक ने 3 छक्के और 5 चौके भी लगाए। सिद्धार्थ,
0: कप्तान शिया सैयद ने 25, युवा वैभव सूर्यवंशी ने 20 रन की पारी खेली। इसके बाद अभिषेक शर्मा ने 8, रिंकी सिंह ने 12 और शिवम दुबे ने नाबाद 6 रन बनाए।
1: अगर जिम्बाब्वे के गेंदबाजों की बात की जाए तो ब्लेसिंग मुजरबानी, रिचर्ड अंगारावा, ब्रेड इवेंस, न्यूमैन, न्यान ह्यूरी और ब्रायन बेनेट ने एक एक विकेट अपने नाम कर लिए।
0: और 220 रन के विशाल लक्ष्य का पीछा करने उतरी जिम्बाब्वे की शुरुआत निराशाजनक रही और उसने 50 रन के अंदर ही 4 विकेट गंवा दिए। ब्रायन बेनेट ने 19 गेंदों में 32 रन, वहीं रायन बर्ल ने 20 रन की पारी खेली। फिलहाल 3 मैचों की श्रृंखला में भारत ने 2-0 की बढ़त बना ली है। और अगर हम एक नजर भारतीय गेंदबाजों के प्रदर्शन पर अगर हम डालें तो क्या कुछ है इनका प्रदर्शन।
1: सिद्धार्थ, अभिषेक शर्मा ने बेहतरीन बल्लेबाजी तो करते ही हैं, वो
0: जी प्रशांत
1: शीर्ष बल्लेबाज हैं T20 में, लेकिन आज उन्होंने गेंद से अच्छा प्रदर्शन किया। 3 ओवर में 17 रन देकर उन्होंने 3 विकेट झटके हैं। साथ ही साथ यश ठाकुर, जिनको आज इस मौका मिला है इस मुकाबले, उन्होंने 2 विकेट लिया है। प्रिंस यादव ने भी लगातार IPL से अच्छा प्रदर्शन करते आ रहे थे सिद्धार्थ, और आज के मुकाबले में भी उन्होंने 2 विकेट अपने नाम किए। वहीं रवि बिश्नोई की बात कर ले, शिवम दुबे की बात कर ले, तिलक वर्मा की बात कर ले, सबने एक एक विकेट अपने झोली में डाले।
0: बिल्कुल, और यहां पर खास बात करनी होगी प्रशांत अभिषेक शर्मा की, जिन्होंने इकोनॉमी जो है 6 की उनकी रही और 17 रन देकर उन्होंने 2 ओवर और 5 गेंदों में 3 विकेट हासिल किए। तो अभिषेक शर्मा की जो शानदार गेंदबाजी थी उसने भी भारत की जीत में एक अहम भूमिका निभाई है।
1: और इसी के दम पे सिद्धार्थ, जिम्बाब्वे की टीम जो है वो 13 गेंद शेष रहते ही 129 रन पर सिमट गई और जिसके कारण भारत को 3 मैचों के श्रृंखला में 2-0 की बढ़त मिल गई है।
0: बिल्कुल, और भारत का जो शानदार प्रदर्शन था, जिस तरह से पहले मैच में भारत ने प्रदर्शन किया फिर दूसरे मैच में, तो ये जो लगातार कंसेक्यूटिव जीत है इसने खिलाड़ियों के मनोबल को काफी बढ़ा दिया है और एक बार फिर भारतीय टीम जो है वो अपने पूरे दमखम के साथ तैयार है और अगले मैच के लिए। तो ऐसा अब सबकी नजर ये है, एक्सपेक्टेशन प्रशांत ये है कि भारतीय टीम कहीं क्लीन स्वीप ना कर दे जिम्बाब्वे को, तो उस पर पूरी नजर है खिलाड़ियों की।
1: बिल्कुल, जिस प्रकार से श्रेयस अय्यर को कप्तानी मिली है, पहले आयरलैंड से वो हार गए, फिर उसके बाद इंग्लैंड से हार मिली है, लेकिन उसके बाद इस सीरीज में भारत बैक ऑन ट्रैक दिखती नजर आ रही है। और आपने जैसा बताया कि उम्मीद की जाए कि भारत अगला मुकाबला जीत कर क्लीन स्वीप करेगी और एक बार फिर अपना परचम लहराएगी।
0: बिल्कुल, तो कहीं ना कहीं जो भारतीय फैंस

0: उनकी भी नजर तीसरे मुकाबले पर रहेगी और खिलाड़ियों के भी जो हौसले हैं वो पूरी तरह से बुलंद हैं और अब ये देखना दिलचस्प होगा कि तीसरे मैच में किस तरह से जो भारतीय खिलाड़ी हैं वो अपना दमखम दिखाते हैं, वो अपना वर्चस्व कायम रखते हैं। और अगर हम देखें प्रशांत, तो जीत जो भारत की हो रही है वो बड़े अंतर से हो रही है, मतलब इस तरह से जो जीत हासिल हो रही है क्योंकि पिछला जो प्रदर्शन था पीछे के, जैसा कि अभी आपने बताया कि भारत का पिछले दिनों जो प्रदर्शन रहा है वो उतना अच्छा नहीं था, तो कहीं ना कहीं भारत ने एक तरीके से कमबैक किया है और बहुत ही अटैकिंग जो खेल होता है उसको दिखाने की कोशिश करी है।
1: बिल्कुल, और जैसे हम क्रिकेट में बात भी करते हैं, तीनों प्रारूप जो है हमारे बैटिंग बॉलिंग फील्डिंग तीनों में अच्छा प्रदर्शन किया गेंदबाजी से। लगातार अभिषेक शर्मा ने आज 3 विकेट लिया, ईशान किशन, वैभव सूर्यवंशी जैसे बल्लेबाज और क्षेत्र रक्षण में भी अच्छी हो रही है वापसी। तो लगातार जो इंग्लैंड में जो कमी रह गई थी, आयरलैंड में जो कमी रह गई थी, इस सीरीज में भारत दमखम के साथ वापसी की है और उम्मीद करेंगे कि तीसरा मुकाबले भी जीतेगी।
0: बिल्कुल, तो इसी उम्मीद के साथ कि हमारे खिलाड़ी इस श्रृंखला में क्लीन स्वीप करेंगे, बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। कॉमनवेल्थ गेम्स में झंडू कुमार ने शानदार प्रदर्शन करते हुए भारत को पहला पदक दिलाया। पैरा पावर लिफ्टर ने पुरुषों के हैवीवेट पैरा पावर लिफ्टिंग इवेंट में कांस्य पदक देश के नाम किया। और इस बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने झंडू को देश के लिए पहला पदक जीतने पर बधाई दी है।
1: प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि झंडू कुमार की ये उपलब्धि उनकी जबरदस्त ताकत, अटूट संकल्प और बरसों की अनुशासित मेहनत का बेहतरीन उदाहरण है। उन्होंने हर चुनौती का सामना करते हुए और इंटरनेशनल मंच पर शानदार प्रदर्शन करके उन्होंने पूरे देश का मान बढ़ाया और अनगिनत भारतीयों को प्रेरित किया है।
0: और इस बीच खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने भी झंडू को कांस्य पदक जीतने पर बधाई दी है। उन्होंने कहा कि झंडू कुमार ने पुरुषों के हैवीवेट पैरा पावर लिफ्टिंग 190 किलोग्राम का जबरदस्त लिफ्ट करके भारत के लिए कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 में पहला मेडल जीता। पूरे देश को उन पर गर्व है। झंडू कुमार ने अपनी इस जीत पर क्या कुछ कहा, आइए जानते हैं।
2: बहुत अच्छा लग रहा है, पहला मेडल है हमारा। हमारे पीछे कोच हैं राजेंद्र सिंह और हमारा जेपी सर हैं, वो भी बहुत सहयोग किए हैं। आज उन्हीं सब बदौलत हमें आज मेडल प्राप्त हुआ है। बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं कि हम पे आज इतना प्रैक्टिस करवाए, प्यार दिए और भी आगे हम अच्छा करने की कोशिश करेंगे।
0: और प्रशांत, झंडू की इस जीत पर हम और तुम और इसके साथ ही पूरा देश उनसे क्या कुछ कह रहा है।

0: और प्रशांत क्यों ना कहें कि क्या खेला रे शाबाश, क्योंकि अगर हम बैकग्राउंड पर झंडू का के नजर डालें तो वो दूसरों के लिए प्रेरणा स्रोत हैं, क्योंकि ब्रॉन्ज मेडल जीतने तक का सफर बिल्कुल भी आसान नहीं रहा। उनकी घर की जो आर्थिक स्थिति थी वो काफी खराब थी। एक समय पर उन्होंने ई रिक्शा चलाकर और सब्जी बेचकर घर का गुजारा किया था। इन संघर्षों के बावजूद झंडू ने पदक जीतकर देश के भावी खिलाड़ियों के लिए मिसाल कायम किया। क्या कुछ कहोगे प्रशांत?
1: बिल्कुल, बहुत ही बेहतरीन प्रदर्शन किया और इस प्रतियोगिता में लगातार अच्छा प्रदर्शन खिलाड़ियों से होता आ रहा, लेकिन पहला पदक तो पहला ही पदक होता है। इस वर्ष भारत को पहला पदक दिलाना एक वर्चस्व स्थापित करने की तरह है।
0: बिल्कुल, पढ़ते हैं अगली खबर की ओर। ग्लासगो में भारतीय मुक्केबाज जादूमणि सिंह मंडेनगमाम ने राष्ट्रमंडल खेलों में दमदार प्रदर्शन करते हुए प्री क्वार्टर फाइनल में जगह बनाई है। राउंड ऑफ 32 मुकाबले में जादूमणि ने पुरुषों के 55 किलोग्राम वर्ग में स्कॉटलैंड के एरन कलन को 5-0 से हराया। तो प्रशांत क्यों ना सुन लेते हैं की रिपोर्ट।
1: बिल्कुल,
2: ग्लासगो के SEC हॉल में खेले गए इस मुकाबले में जादूमणि शुरू से ही आखिर तक विपक्षी मुक्केबाज पर पूरी तरह हावी रहे। उन्होंने तेज पंच, सटीक निशाने और मजबूत डिफेंस के दम पर अपने प्रतिद्वंदी को पूरे मैच में वापसी करने का कोई मौका नहीं दिया। सभी 5 जजों ने हर राउंड में जादूमणि को विजेता माना। घरेलू दर्शकों के समर्थन के बावजूद तो स्कॉटलैंड के एरन कलन भारतीय खिलाड़ी की गति और रणनीति के आगे बेबस नजर आए। भारतीय मुक्केबाज के एक के बाद एक पंचों

0: का एरन कलन के पास कोई जवाब नहीं था। इसी जीत के साथ जादूमणि राउंड ऑफ 16 में पहुंच गए हैं। अब 26 जुलाई को उनका मुकाबला पाकिस्तान के रहमान से होगा। जादूमणि अगर पाकिस्तानी मुक्केबाज के खिलाफ जीत दर्ज करने में सफल रहते हैं तो वह क्वार्टर फाइनल का टिकट हासिल कर लेंगे। जादूमणि को भारत की ओर से पदक का बड़ा उम्मीदवार माना जा रहा है। जादूमणि की इस जीत से भारतीय बॉक्सिंग टीम ने प्रतियोगिता में मजबूत शुरुआत की है।
1: जी हाँ, जादूमणि ने अपना जो जादू दिखाया है प्रशांत, वो तो इस समय सबके सिर चढ़कर बोल रहा है, और क्यों ना बोले, इतना शानदार प्रदर्शन जो किया है।
2: और सिद्धार्थ, उधर भारतीय मुक्केबाज सचिन सिवाच ने आज स्कॉटिश इवेंट कैंपस में हुए कड़े मुकाबले में कनाडा के क्योमा अल हमदीह को हराकर पुरुषों के 60 किलोग्राम इवेंट की प्री क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली है। 26 साल के पूर्व कॉमनवेल्थ यूथ गेम्स चैंपियन ने 4-1 से जीत हासिल की।
1: जी हाँ, सचिन सिवाच और क्योमा अल अहमदी के बीच हुए मुकाबले की शुरुआत बेहद रोचक रही। दोनों बाएं हाथ के मुक्केबाजों ने रिंग के बीच में एक दूसरे पर जमकर मुक्के बरसाए। सचिन की तेज टाइमिंग और साफ कनेक्शन शुरुआती राउंड में अहम साबित हुआ। उन्हें थोड़ी बढ़त मिली क्योंकि 5 में से 3 जजों ने इसे 10-9 से उनके पक्ष में स्कोर किया, लेकिन फाइनल जिस तरह से आज हुआ और जिस तरह से उन्होंने 60 किलोग्राम इवेंट के प्री क्वार्टर फाइनल में जगह बनाई, उनको हम स्पोर्ट्स कैन की पूरी टीम का सलाम।
2: और बात लॉन बॉल्स की भी कर लेते हैं सिद्धार्थ। रूपा रानी तिर्की और पिंकी सिंह की भारतीय जोड़ी ने आज राष्ट्रमंडल खेलों की लॉन बॉल्स प्रतियोगिता में अपना दबदबा बनाते हुए महिला पेयर्स के सेक्शन बी में टोंगा को टाई ब्रेकर में 1-0 से हराकर सेमीफाइनल में जगह बनाने की अपनी उम्मीदों को कायम रखा है। रूपा और पिंकी ने टोंगा के पेरिस बेकर और मिलिका नाथन के खिलाफ पहला सेट 5-2 से जीता था। सिद्धार्थ,
1: क्या बात है, ये शानदार जो जोड़ी का प्रदर्शन है वो बहुत अच्छा है, क्योंकि अगर हम देखें तो इनका जो पूरा सफर रहा है काफी अच्छा रहा है। रूपा पिंकी दोनों ने 2022 के बर्मिंघम राष्ट्रमंडल खेलों में स्वर्ण पदक जीतने वाली महिला फोर टीम का वो हिस्सा थी, तो उनसे हम सभी को बेहद उम्मीद है। और दूसरी ओर पुरुष सिंगल्स के सेक्शन डी के मैच में भारत के शीर्ष लॉन बॉल्स खिलाड़ी पुतुल सोनोवाल का सामना मलेशिया के इज्जत शमीर से जारी है। फिलहाल वो 4-8 और 4-9 के स्कोर से पीछे चल रहे हैं।
2: बात अब स्क्वाश पर भी कर लेते हैं। अनाज सिंह ने ऐतिहासिक प्रदर्शन करते हुए वर्ल्ड जूनियर स्क्वाश चैंपियनशिप के महिला सिंगल्स के फाइनल में जगह बना ली है। फाइनल में आज रात उनका सामना मिस्र की रुकिया सलीम से होगा।
1: जी हाँ, और हम सब की नजर आज रात उस मैच पर लगी होगी। और आपको बता दें कि अनाहत सिंह जोशाना चिनप्पा के बाद इस प्रतियोगिता के फाइनल में पहुंचने वाली दूसरी भारतीय खिलाड़ी बन गई हैं, और आज पूरे देश को फाइनल में उनकी जीत का इंतजार रहने वाला है। और इन्होंने जिस तरीके से, हम ये देखें कि सेमीफाइनल मुकाबलों में बारब को 11-3, 8-11, 11-4 और 11-6 से जिस तरीके से हराया, वो अपने आप में काबिले तारीफ है।
2: बात हॉकी पर भी कर लेते हैं सिद्धार्थ। मस्कट में FIH यूथ हॉकी एशियन चैंपियनशिप में भारतीय सब जूनियर्स पुरुष टीम का शानदार प्रदर्शन जारी है। टीम ने मेजबान ओमान को 10-1 से हराने के बाद पाकिस्तान को 7-3 से शिकस्त दी। हालांकि महिला टीम को इसमें प्रतियोगिता में हार का सामना करना पड़ा।
1: और चलते चलते नजर डाल लेते हैं निशानेबाजी पर। हांगझोउ में भारत की सोनम उत्तर मस्कर ओलंपियन इला वेनिल वलारविन ने आज शानदार प्रदर्शन करते हुए ISSF विश्व कप निशानेबाजी में महिलाओं की 10 मीटर एयर राइफल स्पर्धा के फाइनल में जगह बना ली है। और समय हमें अब अनुमति नहीं दे रहा है कि हम कुछ और खेल खबरों पर चर्चा करें। और प्रशांत, जिस तरह से आज का दिन स्पोर्ट्स में बहुत अच्छा रहा, जिस तरफ एक तरफ क्रिकेट में हमने जो सफलता हासिल करी है वो अपने आप में बहुत उमदा रही है।
2: बिल्कुल बिल्कुल सिद्धार्थ, और कॉमनवेल्थ गेम्स में भी भारतीय खिलाड़ियों का बेहतरीन प्रदर्शन जारी है।
1: तो अब इसी के साथ हम दोनों को दीजिए अनुमति। नमस्कार।
3: क्या आप परेशानियों से घिरे हैं? मन भारी है और कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा? याद रखें, समाधान आपके पास है। टेलीमानस के निशुल्क नंबर 14416 पर कॉल करें। कहीं से भी कभी भी 24 घंटे यह सुविधा उपलब्ध है। यहाँ आपकी बात सुनी जाती है, समझी जाती है और आपको सही दिशा दी जाती है। आप अकेले नहीं है, मदद

0: बस एक कॉल दूर है।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं विशाल शर्मा। मुख्य समाचार। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफा दिया। कांग्रेस जनता पार्टी ने केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा और डॉक्टर जितेंद्र सिंह के साथ बातचीत और सरकार द्वारा मांगों को स्वीकार किए जाने के बाद विरोध प्रदर्शन तत्काल प्रभाव से समाप्त किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल आकाशवाणी पर मन की बात कार्यक्रम में अपने विचार साझा करेंगे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू तीन देशों मोल्दोवा, उत्तरी मैसेडोनिया और रोमानिया की यात्रा पूरी कर स्वदेश रवाना। उत्तर प्रदेश में सारनाथ के प्राचीन बौद्ध स्थल को यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया। और हरारे में भारत ने दूसरे T20 क्रिकेट मैच में मेजबान जिम्बाब्वे को 90 रन से हराया। अब समाचार विस्तार से। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपना इस्तीफा सौंप दिया। श्री प्रधान ने कहा कि पिछले 10 दिनों से छात्रों के विरोध प्रदर्शन के बाद उत्पन्न स्थिति से वे व्यथित हैं। उन्होंने कहा कि ये उनके लिए व्यक्तिगत प्रतिष्ठा का विषय नहीं है। श्री प्रधान ने कहा कि जंतर मंतर और पूरे देश में वर्तमान स्थिति का राष्ट्र विरोधी ताकतें लाभ न उठा सकें, इसलिए उन्होंने प्रधानमंत्री को इस्तीफा सौंपने का निर्णय लिया है। श्री प्रधान ने कहा कि नीट यूजी परीक्षा में अनियमितताओं के बाद सरकार ने जांच सीबीआई को सौंप दी और परीक्षा रद्द कर दी। इस बीच राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने श्री प्रधान का मंत्रिपरिषद से इस्तीफा तत्काल प्रभाव से स्वीकार कर लिया है। केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी नए शिक्षा मंत्री होंगे। उपभोक्ता कार्य, खाद्य और सार्वजनिक वितरण और नवीन तथा नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री श्री जोशी को शिक्षा मंत्रालय का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा है कि शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का 10 साल का सफर सार्वजनिक जीवन और विद्यार्थी कल्याण के प्रति आजीवन समर्पण का प्रमाण है। श्री रिजिजू ने देश के शिक्षा तंत्र को सुदृढ़ करने और लाखों युवा विद्यार्थियों को हर निर्णय के केंद्र में रखने के लिए श्री प्रधान के ईमानदार प्रयासों की सराहना की। भाजपा अध्यक्ष नितिन नवीन ने कहा कि श्री प्रधान ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के सफल कार्यान्वयन और अन्य पहलों के माध्यम से भारत की शिक्षा व्यवस्था में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। कांग्रेस जनता पार्टी सीजेपी ने सरकार द्वारा मांगों को स्वीकार किए जाने के बाद आंदोलन को तत्काल प्रभाव से समाप्त कर दिया है। केंद्रीय मंत्री जगत प्रकाश नड्डा और जितेंद्र सिंह के साथ प्रतिनिधिमंडल की तीसरे दौर की वार्ता के बाद सीजेपी प्रवक्ता आशुतोष रांका ने लोगों से शांतिपूर्वक घर लौटने की अपील की।
2: तमाम मांगे जो हमारी थी वो मान ली गई है, तो हम इमीडिएट इफेक्ट से प्रोटेस्टर्स से रिक्वेस्ट करते हैं कि आप विड्रॉ करें, पीसफुली अपने घर वापस जाएं और आगे की जो भी हमारी रणनीति होगी या बातचीत होगी उससे हम आपको अवगत कराएंगे।
1: श्री जगत प्रकाश नड्डा ने कहा कि सरकार ने प्रदर्शनकारियों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं करने की मांग स्वीकार कर ली है।
3: सबसे पहली बात तो ये है कि कोई भी एक्शन FIR न हो और अगर है तो वो विड्रॉ हो और उसको विड्रॉ करने की बात कोई भी एक्शन नहीं होगा, इस बात को सरकार ने स्वीकारा है जो प्रोटेस्टर्स के साथ प्रोटेस्ट के दौरान हुआ है। उसी तरीके से फ्यूचर में भी जो ऑर्गेनाइजर्स हैं और प्रोटेस्टर्स हैं उनका इस एक्टिविटी के लिए कोई भी उन पर आगे केस नहीं होगा, इस बात को हम लोगों ने माना है।
1: नीट यूजी पेपर लीक के बाद आत्महत्या करने वाले छात्रों के परिवारों को मुआवजे के मुद्दे पर श्री नड्डा ने कहा कि सरकार नियमों तथा विनियमों के अनुरूप अधिकतम मुआवजा सुनिश्चित करेगी।
3: कंपनसेशन के बारे में सरकार ने बड़े स्पष्ट शब्दों में कहा है, जान किसी बच्चे की जाए और उसके प्रति हम भी सहानुभूति रखते हैं। प्रधानमंत्री मोदी जी अत्यंत सहानुभूति के साथ कहा है कि ऑनरेबल कंपनसेशन अकॉर्डिंग टू द रूल्स एंड रेगुलेशंस व्हाटएवर मैक्सिमम विल बी पॉसिबल दैट विल बी गिवन टू देम।
1: परीक्षा सुधारों पर सीजेपी के 5 सूत्री प्रस्ताव पर श्री नड्डा ने कहा कि सरकार इस प्रस्ताव पर गंभीरता से विचार करेगी। भारतीय जनता पार्टी ने संसद में नीट पेपर लीक मुद्दे पर चर्चा से कांग्रेस के पीछे हटने का आरोप लगाया है। नई दिल्ली में पार्टी प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी ने यह बात कही।
4: कांग्रेस पार्टी से स्पष्ट रूप से पूछना चाहता हूं कि सोमवार को संसद के वर्तमान सत्र का दूसरा सप्ताह प्रारंभ होगा, आप इस समस्या पर और आपके द्वारा जो भी विषय रखे गए जब सरकार संसद में चर्चा करने के लिए

0: तैयार है तो आप सोमवार से संसद की चर्चा में भाग लेंगे अथवा पुनः चर्चा से भागेंगे।
1: श्री त्रिवेदी ने आरोप लगाया कि कुछ लोगों का एकमात्र उद्देश्य राजनीतिक लाभ उठाना है, न कि छात्रों की चिंताओं का समाधान करना। लोकसभा में विपक्ष के नेता और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने सरकार से देश की शिक्षा व्यवस्था में सुधार लाने के लिए ठोस कदम उठाने की मांग की है। नई दिल्ली में उन्होंने केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे को छात्रों की जीत बताया। महाराष्ट्र शिक्षक पात्रता परीक्षा TET पेपर लीक मामले के मुख्य आरोपी विजेंद्र कुमार गुप्ता और उसके सहयोगी इंद्रजीत विनय कुमार सिंह को भिवंडी की एक अदालत ने 30 जुलाई तक पुलिस हिरासत में भेज दिया है। दोनों को बिहार के समस्तीपुर से गिरफ्तार किया गया था। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कांग्रेस और समाजवादी पार्टी की आलोचना करते हुए कहा कि पेपर लीक माफिया इन्हीं पार्टियों की देन है। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार पेपर लीक माफिया के खिलाफ सख्त कानून ला रही है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल सवेरे 11 बजे आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों के साथ अपने विचार साझा करेंगे। कार्यक्रम का प्रसारण आकाशवाणी और दूरदर्शन के समूचे नेटवर्क, आकाशवाणी समाचार वेबसाइट और न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप पर किया जाएगा। हिंदी प्रसारण के तुरंत बाद आकाशवाणी क्षेत्रीय भाषाओं में भी इस कार्यक्रम का प्रसारण करेगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू मोल्दोवा, उत्तरी मैसेडोनिया और रोमानिया की यात्रा पूरी करने के बाद नई दिल्ली के लिए रवाना हो गई हैं। यात्रा के अंतिम चरण में उन्होंने रोमानिया के राष्ट्रपति निकुशो डान के साथ व्यापार, निवेश, रक्षा, डिजिटल प्रौद्योगिकी, शिक्षा, नवीकरणीय ऊर्जा और संस्कृति सहित विभिन्न क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग को मजबूत करने के उद्देश्य से व्यापक चर्चा की। बुखारेस्ट में उन्होंने भारतीय समुदाय के सदस्यों के साथ बातचीत की। राष्ट्रपति ने भारतीय समुदाय को दोनों देशों के बीच बढ़ती साझेदारी का एक महत्वपूर्ण स्तंभ बताया।
2: भारतीय प्रवासी समुदाय एकजुट होकर रोमानिया में भारत की सांस्कृतिक विरासत को जीवंत बनाए। भारतीय IT इंजीनियरिंग स्कॉलर्स, रिसर्चर्स, हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स तथा विद्यार्थियों की नई पीढ़ी अब रोमानिया को अपना घर बना रहे हैं। रोमानिया की अर्थव्यवस्था और समाज में अपना योगदान तथा यहाँ भारतीय संस्कृति और मूल्यों के प्रसार के लिए आपके प्रयास आपको भारत का सच्चा प्रतिनिधि बनाते हैं।
1: विधि और न्याय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने नई दिल्ली में सिंगापुर के कानून मंत्री एडविन टोंग SC के साथ द्विपक्षीय बैठक की। श्री मेघवाल ने दोनों देशों के बीच कानूनी सहयोग मजबूत करने, वैकल्पिक विवाद समाधान को बढ़ावा देने और संस्थागत तथा न्यायिक सहयोग बढ़ाने पर चर्चा की। सरकार नियमित संवाद और रचनात्मक परामर्श के माध्यम से कर्मचारी संगठनों के साथ जुड़ने के लिए प्रतिबद्ध है। कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने नई दिल्ली में भारतीय मजदूर संघ से संबद्ध भारतीय डाक कर्मचारी संघ के 12 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल के साथ बातचीत के दौरान ये बात कही। डॉक्टर सिंह ने बताया कि लगभग 3 दशकों से लंबित कई पुरानी सेवा संबंधी शिकायतों का समाधान पारदर्शी और कर्मचारी केंद्रित संचालन के माध्यम से किया गया है। रसायन और उर्वरक मंत्री JP नड्डा ने आज नई दिल्ली में लघु उद्योग भारती फार्मा कॉन्क्लेव 2026 का उद्घाटन किया। श्री नड्डा ने कहा कि भारत का फार्मास्यूटिकल सेक्टर राष्ट्र निर्माण का एक प्रमुख स्तंभ है, जो नवाचार को बढ़ावा देता है, रोजगार सृजित करता है और सस्ती स्वास्थ्य सेवा सुनिश्चित करता है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं। उत्तर प्रदेश के सारनाथ को यूनेस्को विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया है। उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसे प्रत्येक भारतीय के लिए गर्व का क्षण बताया है। उपराष्ट्रपति ने कहा कि सारनाथ भारत की शाश्वत आध्यात्मिक और दार्शनिक विरासत का प्रतीक है। प्रधानमंत्री ने कहा कि इससे दुनिया भर के लोग सारनाथ आने और भगवान बुद्ध के आदर्शों से जुड़ने के लिए प्रेरित होंगे। संस्कृति और पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने कहा कि सारनाथ मानवता के लिए भारतीय सभ्यता के गहन आध्यात्मिक और दार्शनिक योगदान को दर्शाता है। ओडिशा के पवित्र नगर पुरी में ग्रैंड रोड पर भगवान जगन्नाथ, भगवान बलभद्र और देवी सुभद्रा की भव्य रथ यात्रा देश विदेश से आए श्रद्धालुओं के आकर्षण का केंद्र बनी हुई है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
3: पुरी में ग्रांड रोड पर अपने शानदार रथों पर विराजमान भगवान जगन्नाथ, भगवान बलभद्र और देवी सुभद्रा आज पवित्र सुना

भव्य लग रहे हैं। उन्होंने बेहद खूबसूरती से बने मुकुट, हार, बाजूबंद, झुमके और अन्य पारंपरिक आभूषण पहने हैं। सालाना रथ यात्रा की सबसे भव्य रस्मों में से एक इस पवित्र स्वर्ण बेस के

0: दर्शन कर सकेंगे। प्रकाश दास, आकाशवाणी समाचार।
1: लद्दाख में 27वें करगिल विजय दिवस समारोह का पहला दिन आज शाम द्रास स्थित करगिल युद्ध स्मारक पर आयोजित शौर्य संध्या समारोह के साथ संपन्न हुआ। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह द्रास पहुंचे और समारोह में शामिल हुए। समारोह के दौरान रक्षा मंत्री ने करगिल शहीदों के परिजनों को श्रद्धांजलि अर्पित कर ऑपरेशन विजय के वीर योद्धाओं के सर्वोच्च बलिदान को नमन किया। आकाशवाणी कल करगिल विजय दिवस के अवसर पर पर्सन बिहाइंड द स्टोरी श्रृंखला के अंतर्गत करगिल युद्ध के वयोवृद्ध और भारत के पहले ब्लेड रनर मेजर डीपी सिंह से बातचीत प्रसारित करेगा। कार्यक्रम का प्रसारण कल दोपहर 12:30 बजे 100.1 आकाशवाणी गोल्ड पर होगा। आप इसे न्यूज ऑन AIR ऐप और न्यूज ऑन AIR के आधिकारिक यूट्यूब चैनल पर भी सुन सकते हैं। भारत की पहली हाइड्रोजन चालित रेलगाड़ी ने 1200 किलोमीटर से अधिक की दूरी तय की है। इससे 3000 लीटर से अधिक डीजल की खपत कम हुई है। इस रेलगाड़ी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 17 जुलाई को जींद और सोनीपत के बीच रवाना किया था। ये परियोजना भारतीय रेलवे के नेतृत्व में एक स्वदेशी पहल है। राजस्व खुफिया निदेशालय ने सोने की तस्करी करने वाले गिरोह के खिलाफ कार्रवाई करते हुए 27 किलो से अधिक विदेशी सोना जब्त किया है और 12 लोगों को गिरफ्तार किया है। इस सप्ताह देश भर में खुफिया जानकारी के आधार पर कई अभियान चलाए गए। मौसम विभाग ने मध्य महाराष्ट्र और ओडिशा में कल अत्यधिक वर्षा का रेड अलर्ट जारी किया है। छत्तीसगढ़, गुजरात, कोंकण और गोवा में भी अगले दो दिन के दौरान तेज बारिश की संभावना है। तटीय आंध्र प्रदेश, पूर्वी मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल के गांगेय क्षेत्र, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, झारखंड, उत्तराखंड, पश्चिमी राजस्थान और उत्तर पूर्वी क्षेत्र में कल तेज वर्षा होने की आशंका है। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, आंध्र प्रदेश, उत्तरी आंतरिक कर्नाटक, तमिलनाडु, पुदुचेरी और कारिकाल में सोमवार तक बिजली चमकने और तेज हवाओं के साथ बारिश का पूर्वानुमान है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने असम में बाढ़ से हुई जानमाल की हानि और तबाही पर गहरा दुख व्यक्त किया है। राष्ट्रपति ने इस आपदा से प्रभावित सभी लोगों की सुरक्षा और बचाव, राहत और पुनर्वास कार्यों में लगे सभी कर्मियों के कुशल मंगल की कामना की। उन्होंने आश्वासन दिया कि पूरा देश असम के लोगों के साथ एकजुटता से खड़ा है। और अब बात खेलों की। हरारे में दूसरे T20 क्रिकेट मैच में भारत ने जिम्बाब्वे को 90 रन से हरा दिया है। 220 रन के लक्ष्य का पीछा करते हुए जिम्बाब्वे की टीम 18वें ओवर में 129 रन पर सिमट गई। ईशान किशन ने शानदार 81 रन की पारी खेली और उन्हें प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। तीन मैचों की श्रृंखला में भारत ने 2-0 की बढ़त बना ली है। अनाहत सिंह ने इतिहास रचते हुए विश्व जूनियर स्क्वाश चैंपियनशिप के महिला सिंगल्स के फाइनल में जगह बना ली है। फाइनल में उनका सामना आज रात मिस्र की रुकैया सलीम से होगा। अनाहत सिंह जोशना चिनप्पा के बाद इस प्रतियोगिता के फाइनल में पहुंचने वाली दूसरी भारतीय खिलाड़ी बन गई हैं। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफा दिया। कॉकरोच जनता पार्टी ने केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा और डॉक्टर जितेंद्र सिंह के साथ बातचीत और सरकार द्वारा मांगों को स्वीकार किए जाने के बाद विरोध प्रदर्शन तत्काल प्रभाव से समाप्त किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल आकाशवाणी पर मन की बात कार्यक्रम में अपने विचार साझा करेंगे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू तीन देशों मोल्दोवा, उत्तरी मैसेडोनिया और रोमानिया की यात्रा पूरी कर स्वदेश रवाना। उत्तर प्रदेश में सारनाथ के प्राचीन बौद्ध स्थल को यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया। और हरारे में भारत ने दूसरे T20 क्रिकेट मैच में मेजबान जिम्बाब्वे को 90 रन से हराया। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

कल दोपहर 2 बजे मिड डे न्यूज के साथ। तब तक के लिए कार्यक्रम कक्ष में उपस्थित प्रसारण सहायक श्री संगे बम्पा सिरथीपा, नियंत्रण कक्ष में उपस्थित अभियांत्रिकी सहायक श्री सुश्री शिखा डेका, ट्रांसमीटर में उपस्थित अभियांत्रिकी सहायक श्री न्यूटन बोरा, श्री अच्युत बर्मन और श्री हिमांतो स्वर्गरी तथा अन्य सहकर्मियों के साथ मुझे